देखो पैमाना पूरा भरा करो और नुकसान न किया करो और तराजू सीधी रखकर तोला करो और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो और मुल्क में फसाद न करते फिरो और उससे डरो जिसने तुमको और पहली खलकत को पैदा किया। वो कहने लगे कि तुम तो जादू जदा हो और तुम और कुछ नहीं हम ही जैसे आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो, सो अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। शुएब ने कहा कि जो काम तुम करते हो मेरा परवरदिगार उससे खूब वाकिफ है। तो उन लोगों ने उनको झुटलाया, पस साइबान वाले दिन के अजाब ने उनको आ पकड़ा, बेशक वो बड़े सख्त दिन का अजाब था, इसमें यकीनन निशानी है। और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है मेहरबान है।

فسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله.

مغفرة بما يرجع المرسلون فلما جاء

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream. Internet.
2: तो आहिन उते सुठी खोराक ढोरन जी जरूरत आहे.
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब.

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुख्य मुझी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.
4: उर्दन में अमेरिकी अॾे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमेरिका जे केतिरनि ई फ़ौजी जहाज़नि खे नुक़सान पहुतो आहे। अमेरिकी मीडिया तसदीक करे छॾी। CBC न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिज़ाइल हमलनि में अमेरिका जा F-15 जहाज 18 थर्ड बोल्ट मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त कंहिं बि अमेरिकी फ़ौजी खे नुक़सान नाहे पहुतो। सदर आसिफ अली ज़रदारी लंडन खां ॾे पहुची वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जे बरतानिया में एयरपोर्ट्स जे सिस्टम मुतासिर थियण सबबि रवानगीअ में हिकु ॾींहुं देर थी वई।

0: ऐं घोड़ाबारी वेझो शहरोज ऐं मोटरसाइकिल में टकर हिकु ॼणो फोत। बस ज़ख़्मी हादसे में श्याम मीर सोढो फोत थी वियो। शबीर सोढो ऐं अमीर बख़्श कैरी ज़ख़्मी थिया।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट अइंबा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe.
1: Hathe gulmindi, piri gulmindi.
2: आई अदी अज तो दादी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आ है त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आ है ए हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
2: तमा ब वनी चवा उन के त ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
3: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
6: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐ रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहे
1: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐ 02424601000
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेहरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03001-380-8347
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: वारे सॾु ते वकीलनि पारां अदालती कार्रवाइयुनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा कराची खां कश्मोर ऐं कारुंजर खां केटी बंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची हैदराबाद मीरपुर ख़ास शहीद बेनज़ीराबाद सखर ऐं लालखाने डिवीज़न जे समूरनि नंढनि वॾनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करण जो मुतालबो। हुकूमत जे अगुरबत जी चकीअ में पिसिजंदड़ अवाम ते वार जारी। पंजे ॾींहं में पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में रिकॉर्ड वाच करे छॾी। 3.40 रुपया महांगो थियण बाद पेट्रोल फी 360.75 रुपया थी वियो। डीज़ल 6.72 रुपया महांगो थियण बाद 392.67 रुपया फी लीटर थी वियो। पंजे ॾींहं दौरान पेट्रोल 22 ऐं डीज़ल 15 रुपया महांगो थियो। कुर्दनि में अमेरिकी अॾे ते ईरानी हमलनि जे नतीजे में अमेरिका जे केतिरनि ई फ़ौजी जहाज़नि खे नुक़सान पहुतो आहे। अमेरिकी मीडिया तस्दीक करे छॾी। CBC न्यूज़ पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरानी मिज़ाइल हमलनि में अमेरिका जा F-15 जहाज़ A-10 बॉलेट मुतासिर थिया आहिनि, जॾहिं त कंहिं बि अमेरिकी फ़ौजीअ खे नुक़सान नाहे पहुतो। सदर आसिफ अली ज़रदारी लंदन खां ॾह पहुची वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जी बरतानिया में एयरपोर्ट जो सिस्टम मुतासिर थियण सबबि रवानगीअ में हिकु ॾींहुं देरि थी हुई। कराची में फोरन खीसा खाली हुजण ऐं कुझु बि न मिलण ते शहरीअ खे क़तल करे छॾियो। कोरंगे में हथियारबंद फोर लुट करे रहिया हुआ त हिकु शख़्स वटां कुझु बि न मिलियो त फोरन बहस करण ते शहरीअ खे गोली हणी क़तल करे छॾियो। ज़रियनि मूजिबि फोरन शहरीअ वटां कुझु बि न मिलण ते खेसि क़तल कयो आहे। कराचीअ में एमपॉक्स जो वधीक हिकु केस रिपोर्ट। सरजानी टाउन वासी 45 वरनि जे शख़्स में एमपॉक्सिस्तान जी तस्दीक थी वई। इस्पताल इंतज़ामिया मूजिबि मरीज़नि जे जिस्म ते दाणा ज़ाहिर थियण बाद करायल टेस्ट में एमपॉक्स जी तस्दीक थी। मरीज़ खे आइसोलेट कयो वियो आहे। घोड़ाबारी वेझो शहज़ोर ऐं मोटरसाइकिल में टकर, हिकु ॼणो फोत, ॿ ज़ख़्मी। हादसे में शामीर सोडो फोत थी वियो, शबीर सोडो ऐं अमीर बख़्श ज़ख़्मी थिया। ऐं जापान में हिकु कलाक जी भर मचाए छॾी। रोड रस्ता तलाउ बणिजी विया। जापानी शहर नागोया में बरसाती पाणी इमारतनि, मेट्रोपोलिटन स्टेशन ऐं शॉपिंग मॉल्स में दाख़िल। कार ववार मुफ़लिस बणिजी वियो। रोड रस्तनि ते बीठल गाॾियूं ॿुॾी वियूं। जापानी इख़्तियारनि पारां अॼु बि बरसाति जारी रहण जी हक़ थी। बीहर बोर्ड जी वार्निंग जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो महिरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003 असली चीजान चारो मसालों जी सुन्याण पर ट्रेडमार्क नंबर 34,000 डीसी करे खरीद कंदा जी जान चारो मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जी जान चारो मसालो ढोरे सेहतमंद जी जान चारो मसालो जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 03005109
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 03013992836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन।

0: नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहराब पर 03003385 69।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर आए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

0: ऐं विजुअल लेक्चर सिस्टम जी सहूलत केमेस्ट्री फिज़िक्स बायोलॉजी रियाज़ी ऐं इंग्लिश ते ख़ुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट ज़रिए मेडिकल ऐं इंजीनियरिंग में क़ाबिले तहसीन नतीजा रांदियुनि जो मैदान ऐं उते मुनक़िद थींदड़ मुक़ाबला तहरीर तकरीर ऐं ज़हनी आज़माइश जा मुक़ाबला पंहिंजे अखियुनि जे नूर नियाणियुनि ऐं प्यारनि पुटनि जे मुनासिब तइलीम ऐं तरबियत लाइ अॼु ई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विज़िट करियो वधीक राब्ते लाइ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मेमण मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000027234 निसार अहमद मेमण प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120
2: परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न
2: अदा दुकान
4: कल शरणपुर ओरी जो दुकान खुलापी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगरलस डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमण 03013808347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म।

0: करने के लिए। महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म, लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहराब पर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, ठरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

सिंध बार जे सदके सिंध जा वकील एक आवाज मोहतद सिंध जो वाजे पैगाम सिंध बार जे सिंध यूनिटी डे वारे सदके वकीलन पारा अदालती कारवाई जो बायकॉट ए मुजाहरा कराची का कश्मोर ए कारुंजर का केटी बंदर ताई को भी वकील कें भी अदालत में पेश न थो। कराची हैदराबाद मीरपुर खास शहीद बेनजीराबाद सखर ए लारकानी डिवीजन के समूरन नंढन वरन अदालतन में भी को भी केस न हलो। नंढन वरन शहर में वकीलन जा मुजाहरा सिंध खिलाफ साजिशू बंद करण जो मुतालबो।

0: हुकूमत जा गुर्बत की चक्की में पिसंदड़ अवाम दे वार जारी पंजे ढी भी पेट्रोल एंड डीजल के अघन में रिकॉर्ड वाध कर छी टे रुपया चालीह पैसा महंगो थियण बाद पेट्रोल फी 370 रुपया 75 पैसा थी वो डीजल 6 रुपया 72 पैसा महंगो थियण बाद 392 रुपया 67 पैसा फी लीटर थी वो पंजे ढी दौरान पेट्रोल 22 एंड डीजल 15 रुपया महंगो थियो। उर्दन में अमेरिकी अड्डे से ईरानी हमलों के नतीजे में अमेरिका के केतर ही फौजी जहाजन के नुकसान पौतो है। अमेरिकी मीडिया तस्दीक कर छी सीबीसी न्यूज पैंजी रिपोर्ट में जानायो है ते ईरानी मिसाइल हमलों में अमेरिका जा F-15 जहाज A-10 3rd बुलेट मुतासिर थिया जडे त कें भी अमेरिकी फौजी के नुकसान न पौतो। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो तुर्किया के परदेही वजीर हाकान फिकदान से राबतो बिन तरफा लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल बोल परदेही खाते मूजिब इसहाक डार ए हाकान में विच में ओभर की तब्दील थन्दड़ सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई वही सूरत हाल से सिफारतकारी वो सिलसिलो जारी रखने इतफाक। सदर आसिफ जरदारी लंडन का डे पहुंची वो सदर आसिफ जरदारी की बरतानिया में एयरपोर्ट्स जो सिस्टम मुतासर थे सब रवानगी में एक ढी की देर थी। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की अदालती जांच जारी गरु वजीर जयाल अंजार कमीशन आडो पेश जयाल अंजार एडवोकेट जनरल के रवैये ते कमीशन का माजरत कर छी। जस्टिस उमर सियाल चयो तवां के घुराण जो मकसद अवाम जो एतमाद बहाल करण है डुख्यो कम है वारसन जो भी एतमाद बहाल करणो है। कराची में फौरन खीसा खाली हुजण कुछ भी न मिलण ते शहरी के कतल कर छो कोरंगी में हथियार बंद फुरलुट कर रहा हुआ तो एक शख्स वटा कुछ भी न निकतो फौरन बहस करण ते शहरी के गोली हणी कतल कर छो जरियन मूजिब फौरन शहरी वटा कुछ भी न मिलण ते खेस कतल कयो आहे। मलीर की अदालत कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ते हमले में मुलविस जवाबदार वक्ती जमानत मंजूर करे वरती अदालत पारा 20,000 जा मुतलका जमा कराने जो हुकुम लागापिल केस में सहकार की हिदायत केस की बुधनी 21 सितंबर ताई मुलतवी। कराची में एमपॉक्स जो वधीक एक केस रिपोर्ट सरजानी टाउन वासी 45 वरन के शख्स में एमपॉक्स की तस्दीक की वही अस्पताल इंतजामिया मौजूद मरीज के जिसम ते दाणा जाहिर थियण बाद करार टेस्ट में एमपॉक्स की तस्दीक की मरीज के आइसोलेट कयो वयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर। और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐ गोश्त वधाए अम्हां के खुशहाल बनाए हर पंसार ऐ जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601100।
7: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी है मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सिंध बार जे सर ते सिंध जा वकील एक आवाज मुतद सिंध जो वाजे पैगाम सिंध बार जे सिंध यूनिटी डे वारे सर ते वकीलन पारा दाती कारवाई जो बायकॉट ए मुजाहिरा कराची का कश्मोर ए कारुंजर का केटी बंदर ताई को भी वकील कें भी अदालत में पेश न थियो कराची हैदराबाद मीरपुर खास शहीद बेनजीराबाद सखर ए लारकाने डिवीजन जे समूरन नंडन वरन अदालतन में को भी केस न हलियो नंडन वरन शहरन में वकीलन जा मुजाहिरा सिंध खिलाफ साजिशों बंद करण जो मुतालबो हुकूमत जहा गुर्बत की चकी में पिसंजड़ अवाम ते वार जारी पंजे डीएम पेट्रोल ए डीजल के अघर में रिकॉर्ड वाद कर छी 3 रुपया 40 पैसा महंगो थियण बाद पेट्रोल फी 367 रुपया 75 पैसा थी वो डीजल 6 रुपया 72 पैसा महंगो थियण बाद 392 रुपया 70 पैसा फी लीटर थी वो पंजे डीह दौरान पेट्रोल 22 डीजल 15 रुपया महंगो थियो उर्दन में अमेरिकी अडे ते ईरानी हमलन के नतीजे में अमेरिका के केतरन ही फौजी जहाजन के नुकसान पहुंतो है अमेरिकी मीडिया तस्दीक कर छी सीबीसी न्यूज पैंजी रिपोर्ट में जाना है ते ईरानी मिसाइल हमलन में अमेरिका जा F-15 जहाज A-10 3rd बुलेट मुतासिर थिया जडे कें भी अमेरिकी फौजी के नुकसान न है पहुंतो नायब वजीर आजम इसहाक डार जो तुर्किया के परदेही वजीर से राबतो बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल बोल परदेही खाते मूजिब इसहाक डार ए हाकान विच में ओभर की तब्दील थन्दड़ सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई हुई सूरत हाल से सिफारतकारी वो सिलसिलो जारी रखने इतफाक सदर आसिफ अली ज़रदारी लंडन का डेह पहुंची वो सदर आसिफ अली ज़रदारी की बरतानिया में एयरपोर्ट्स जो सिस्टम मुतासर थे सबब रवानगी में एक ढी देर थी हुई सिंध जो घरू वजीर ज़ियाल अंजार तलबीए ते मीर रज़ा केस की जांच कदन अदालती कमीशन आरओ पेश ज़ियाल अंजार एडवोकेट जनरल के रवैये ते गैर मशरूक माफी वी छी जस्टिस उमर सियाल अवां के घुरान जो मकसद वारसन ए अवाम जो एतमाद बहाल करण है एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर जिम्मेवारानो आमेजो घरू वजीर ज़ियाल अंजार सिंध हुकूमत केस की शफाफ जांच चाहे थी कमीशन के नतीजन ताई पहुंचण जरूरी है जिम्मेवार के मुनफती अंजाम ताई पहुंचाया वो मीर रज़ा केस की जांच कदड़ अदालती कमीशन पारा डॉक्टर उसामा के जवाब से बेतमादी जाहिर 15 सितंबर से जाती हैसियत में तलब कमीशन एसएचओ अदील हेड मोरर जिशान डॉक्टर सीमा ए प्रोफेसर नसीम के 14 सितंबर से तलब करे वरतो कमीशन के रजिस्ट्रार है शहरीन भी केस बाबत जान डेण शुरू कर छी है एक शहरी पारा अकाउंट्स भी जान फराहम करण से राजपो जाहिर किया शहरी डिजिटल फुटप्रिंट्स बाबत जान डी एक शहरी केस में मशकूक शख्स की भी निशानदेही कई कमीशन जान डींदड़ शहरी की सुणप गुझी रखने फैसलो करो है
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।

बिल्कुल जी, आपके होटो पर 440 उल्के सवाल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आगे से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एक प्यारा सा कसीदा एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें हो रही है जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे। तो हाँ जी, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो क्या तरीके कार फॉलो करेंगे उसकी जानिब जरा आ जाते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछ रही हूँ। तो अगर आज के प्रोग्राम का जो सवाल है वो आप लोगों से पूछा जाए तो क्या होने वाला है, तो आज मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप मुझे बताएं। वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे झूठ बोल रहे होते हैं, ऐसा होता है ना, आप लोगों ने भी बहुत सारे झूठ बोले होंगे। वैसे ये तो एक कॉमन सा झूठ हो चुका है आजकल, अगर आप फोन पर किसी से बात करते हैं तो आगे वाला इंसान अगर आपसे पूछता है कि भाई आप कहाँ पहुंचे हैं या फिर कब आ रहे हैं, तो आगे से आपने बोलना है 5 मिनट, हालांकि आप घर बैठे होते हैं। ये तो एक ऐसा झूठ है जो मुझे लगता है कि हर कोई रोजाना क्या मतलब बार बार बोलता ही होगा। तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होगा वो बिल्कुल होगा कि आप मुझे बताएं कि अगर झूठ बोलने पर 100 रुपए फाइन लगती तो आज आप एक दिन के अंदर जो है ना वो कितनी फाइन भरते, आपको क्या लगता है, ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक झूठ बोलने पर 100 रुपए फाइन लगती तो आप रोजाना कितने पैसे भरते। ओके जी, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो ऐसे कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और जैसे आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। और जी जब आप हमारे पेज पर आएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, ऐसे सबको बताइए कि भाई मार्केट में आ चुके हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाती है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के कितने सारे फायदे हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी ना। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई आपकी स्किन जो है ना, ये ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन तो काफी सेंसिटिव है, हम तो कोई प्रोडक्ट लगा ही नहीं पाते, तो हमारी तो काम की ये बात होगी नहीं। तो आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इन है जनाब जो कि आप लोगों के लिए मेडिकेटेड फार्मूला है। जब आप जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे होंगे तो उनको इस चीज का अंदाजा हो चुका होगा, ये जो प्रोमो चल रहा है, ये जो वीडियो चल रही है, तो इसमें जो दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल ये साबित हो रहा है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको किस तरह से अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा, और ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी, क्योंकि ये जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का फार्मूला तैयार किया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के बहुत ज्यादा वाले जो है ना वो फायदे आपको मिलने वाले, और साथ ही साथ अगर आप भी इस्तेमाल करें तो हमारे साथ शेयर कीजिए कितने सारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर आप रابطہ कर सके और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सके। तो जल्दी जल्दी से आपने डायल करना है 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25 970 आई बियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ओके जी। सो जल्दी से नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी से परचेज करके आइए। ओके जी, तो यहाँ पर प्रोग्राम में आज बात हो रही है, टॉपिक जो आप लोगों से पूछा है, टॉपिक ये पूछा है कि आप मुझे बताइए। हाँ जी, आपने आज थोड़ा सा हिसाब कर लेना है कि आप बैठिए और आप सोचिए कि आप दिन में कितनी मर्तबा झूठ बोलते हैं। तो अगर एक झूठ बोलने पर आपको 100 रुपए की फाइन लगती, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि एक दिन में तकरीबन आपका कितना हिसाब होता है कि भाई मुझे कितने पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अंदाजा होगा ना कि आप कितने झूठ बोलते। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और हमें ज्वाइन कीजिए 888 और फेसबुक पर। बिल्कुल जी, आपके मैसेजेस मुझे ना मिलते जा रहे हैं, तो जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं वो ऐसा किया करें, पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। भाई लाइक आप लोगों का जो होता है ना वो मेरे लिए बहुत मायने रख रहा होता है, तो पोस्ट को लाइक जरूर कर दिया करें। और और उसके बाद एक आधे दोस्त को हमारी पोस्ट को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो भाई उन्हें भी पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में आ चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के कितने सारे फायदे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले बताइए जरा, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं? ओके जी, यहाँ पर अखलाक बलोच हमारे साथ माधु दी, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में माधु दी जी आपको वेलकम कहा जाता है। और फरवा गुल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आप ही आप कैसी हैं, होप यू आर फाइन, यस गुड, आप बताएं कैसी हैं। मोहम्मद मीरन जखरानी में सुन रहे हैं, जेकब आबाद से भाईजान को वेलकम कहते हैं। और रशीद खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम कहते हैं। और रशीद खोसो कहते हैं आपका प्रोग्राम माशाल्लाह जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आरजे, थैंक यू वेरी मच सर। और फरवा गुल कहती हैं आप ही आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना, आप मेरा गाना नहीं चला रही हैं। गाना ना चलाने की वजह ये नहीं होती कि मैं आपसे नाराज हूँ, बस वो ऐसे नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे लोगों की फरमाइशें होती हैं। अच्छा, फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मौलाना सलाम अदद अद छाला खुश सफा चाक स्लेट कलम भाऊ क्यों सफा लाजवाब आहे अम्हा वांगे, अम्हा वांगी यानी थोड़ी तारीफ करी वरी हेठा तवा गाने जी फरमाइश करी छी आई सही आ बाबा सही आ। अब्दुल्ला अली हमारे साथ है, ओके जी, अब्दुल्ला अली कहते हैं, हाँ जी लिखते हैं कि लोग बिछड़कर भी बिछड़ते नहीं, वो याद बनकर दिल में हमेशा रहते हैं। अब्दुल्ला शेर क्या बात है जी, आपको वेलकम कहते हैं। और ये हमारे साथ हैं जी अखलाक भाई कहते हैं छड़ा ताना अंदर साढ़े छह दिन था घर वारा ये नहीं सुठो तासानी प्रोग्राम में अच्छी वेंदा आयो। और गुलाम हुसैन अबड़ू लिसनर हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम हो गया। और कासिर खान हमारे साथ हैं, हाय हेलो। और शुएब मंगी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मुस्कान बिल्कुल ठीक ठाक है, शो सजाद अली साजिद का गाना सुनाएं, चलें ठीक है जी, आपकी फरमाइश भी लगा दी जाएगी। और अच्छा फरमाइशें जो लोग कर रहे हैं ना वो मुझे ये भी बताएं कि आप पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं नहीं, और साथ साथ आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कब करने वाले हैं, क्योंकि एम ही आकर फरमाइशें कर देते हैं, कुछ तो बदले में होना चाहिए ना ओके जी, स्मार्ट किशोर भाई हमारे साथ कहते एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, दुनिया का कोई भी शख्स मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं कर सकता, सलाम अदा स्मार्ट हाजिर आए बुद्धि करे करना खुश थी गया थैंक यू। और कासिर खान कहते चापे करोड़ों का फाइन भरते, इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं। अच्छा अखलाक भाई कहते आंसर लगभग 100 रुपया, बस एक झूठ बोलता हूँ, चलो ये हो भी सही है। और फरवा कहती टॉपिक आप ही, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलना बुरी बात होती है, चलें ये भी सही है। और रशीद खोसो कहते हैं अभी हम दिन में 10 मरतबा झूठ बोलते हैं तो 1000 लग चुका होगा, अच्छा। और हिदायतुल्ला कहते हैं सलाम कैसी हो सके तो मेरा एक काम करो, ये सॉन्ग प्ले करो मेरे नाम करो ओके आप ऐसा करें कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें, और हो सके तो ये आप आज ही कीजिएगा। और किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक मुंजो तकरीबन 2 या 3 हज़ार थी वेंदो, अल्लाह एडो कूड़ गालाईंदा आयो अच्छा अब्दुल्ला कहती हैं आप मेरे पापा का नाम क्यों अनाउंस नहीं करती प्रोग्राम में, वो क्या है थोड़ा मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल सा लगता है। अच्छा मैं देखती हूँ क्या है आपके पापा का नाम, अकरी चौधरी खां अली गुलाब शर अब्दुल्ला शर असगट मौजूद हैं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपके पापा का नाम है अली गुलाब शर, ओके थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, आप दोनों को वेलकम कहते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर पर मिल रही है नहीं, मुझे जल्दी से बताइएगा, और उसके अलावा अगर नहीं अवेलेबल तो आप जरा ऐसा कीजिए थोड़ी सी हेल्प कर लिया करें मेरी, और अपने ना करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा लिया करें। उसके बाद आप ऐसा कीजिए हमारे साथ मौजूद रहिए, टॉपिक को फॉलो करते जाइए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यहाँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम।
1: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
2: पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
4: हां भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा
5: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
8: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मेरपुर खास मटियारी सखरन बहरा पर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको वेलकम कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाएगा कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खूबसूरती के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जानब अगर हम आते हैं तो बिल्कुल जी आपको बताते हैं, लेकिन साथ साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। अच्छा, तो मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा था वो भी जरा रिपीट करते हैं ताकि अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लिया करें। तो अगर आज सवाल आप लोगों को बताएं तो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं, अगर आप जरा इस चीज को नोटिस करें और काउंट करें कि रोजाना हम लोग कितना झूठ बोलते हैं ये चीज कभी हमने नोटिस नहीं करी होगी शायद। तो अगर एक झूठ बोलने पर 100 रुपए की फाइन लगे तो आपको क्या लगता है कि डेली आपका कितना खर्चा हो जाएगा, कितने पैसे लग जाएंगे, ये चीज आपने मुझे बतानी है। ठीक है, तो आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते रहिए। आपके मैसेजेस और प्यारे प्यारे फीडबैक्स मुझे मिलते जा रहे हैं जिन्हें हम शामिल प्रोग्राम जरूर रखेंगे। ओके, सो लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है जी मार्केट में, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है। ये दो प्रोडक्ट मार्केट में है जो कि आप जाकर परचेज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसा फार्मूला है जिसे स्किन के डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। आप लोगों को इस चीज का थोड़ा सा अंदाजा हो चुका होगा कि जब आप मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स अगर आप वहां देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये हमारे काम की चीजें है ही नहीं। और उन्हीं चीजों को देखते हुए आपको लगता है कि भाई सारी ही नाइट क्रीमें ऐसी होती हैं, सारी ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। उस इतने सारे प्रोडक्ट के अंदर उसमें से जो है ना वो सही वाला प्रोडक्ट परचेज करना, सही वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सही वाला प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सही वाला प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल जी मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बोटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, तमाम चीजें ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ना सिर्फ नाइट क्रीम है बल्कि ये 2-in-1 फार्मूला है। वो कैसे, क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके अंदर जो ये विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं ये वो फार्मूला है, वो चीजें हैं जो कि भाई आप लोगों के लिए, खास करके खवातीन जो महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं ना, और आप लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई महंगे महंगे फेशियल्स कराएंगे तभी हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं, ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो आपको महंगे से फेशियल कराने के बाद आपको निखार मिलता है। अब ऐसा वाला सीन बन चुका है कि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, आप इतने पैसे भी नहीं लगा सकते हैं, तो आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये 2-in-1 क्रीम है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपके पैसे भी बचाती है, आपका वक्त भी बचाती है, और आपको खूबसूरती भी वो वाली देती है जो आपकी खूबसूरती की हिफाजत करती रहे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल सेफ फार्मूला है, आप इसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और साथ साथ अगर आप डी स्किन का फेस वॉश भी यूज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लाजमी कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के क्या तरीकेकार वो भी सर आप लोगों को बताते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनाब ये नाइट क्रीम है ना, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे भी सही फार्मूला यही है कि अगर आप रात के टाइम इस्तेमाल करें तो सही होगा। सबसे पहले अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिएगा, साफ करने के बाद अपने चेहरे को सुखा लीजिए, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। उंगलियों की मदद से आराम आराम से प्यार प्यार से लगाइए, और इस तरह लगाएं कि क्रीम आपके चेहरे पर किसी नजर आनी चाहिए। क्रीम को पूरा ही स्किन के अंदर जज्ब नहीं कराना होता, इससे भी थोड़ा सा मसला हो जाता है कि जब आपके हाथों की हीट आके फेस पर आती है ना, जब आप रगड़ते हैं, मसलते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो ऐसे भी थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको अच्छे से रिजल्ट मिले, अच्छा सा आपको निखार मिले, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आराम से हल्के हल्के हाथों से इस्तेमाल कीजिएगा। और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर रूटीन को मजीद खास बना देगा। और
लेकिन आप अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन साफ सुथरी हो, अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि आपकी जल्द जो है ना ये डिजर्व करती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो और मजीद जो प्रोडक्ट आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका हेवी सा फार्मूला है, तो उनको जरा बाय बाय कीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हाय हाय कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, ठीक है। चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, ये भी चीज जरा थोड़ी ऐसा होता है कि भाई आप सोचते हैं कि हम मर्द हजरात हैं तो क्या हम लगा सकते हैं, हमारे लिए है, बताएं तो जरा। तो बिल्कुल जी, आप मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो इसमें आप मर्द हजरात भी शामिल हो जाते हैं। तो मर्द हजरात भी लगाएंगे, खवातीन भी लगाएंगे, सब लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और बोलिए ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी चैनल स्टोर पर नहीं अवेलेबल तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 033-27-38-43-09 आप ये सोचेंगे बीच बीच में क्या हो जाता है भाई सिद्रा को, बीच बीच में सिद्रा थोड़ा सिंधी जो है ना वो कमजोर है हमारी, कुछ लोग कमजोर होते हैं, कुछ का दिमाग कमजोर होता है, हमारी थोड़ी सिंधी कमजोर है। चलें कोई बात नहीं, आपको सुनाते मजे मजे के गाने आप लोगों के साथ करते हैं बातें, और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ तक पहुंची, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुके नहीं। आप ऐसा कीजिए, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें, कंजूसियां यहाँ पर नहीं बनती।

जी आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करें जनाब, आपकी खूबसूरती में इजाफा, क्या मतलब बहुत ज्यादा वाला इजाफा आ जाएगा. और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं, तो यहाँ पर सगीर अहमद हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप ही, आप कैसी हैं? आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है, कहते हैं आपका प्रोग्राम अमेजिंग है. आपका प्रोग्राम बचपन से सुनता आ रहा हूँ. सगीर अली खरल फ्रॉम लाड़काना, बचपन बोलकर मेरे को ऐसा फील कराते मैं बड़ी बुढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन वो मेरा भी बचपन था. जी जी, हम सब का बचपन था. अच्छा फरवा गुल कहती हैं आपका शो शेयर और लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच प्यारी. अरशद मरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम अरशद, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? कहते हैं नाइस शो फ्रॉम खैरापुर सिटी, ओके क्या बात है. और किशोर भाई कहते हैं कि मैं वो झूठ बोलता हूँ जिससे लोगों को खुशी मिले, जैसे हम रिश्तेदारों की तारीफ करते हैं, अपनों का दिल रखते हैं, ऐसे समझी ना चरी. जी जी माँ, समझी वैसे.

ये बात बिल्कुल सही है कि हम डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे झूठ बोल रहे होते हैं, इतने झूठ कि हमें अंदाजा भी नहीं लगता कि भाई हम कितने सारे झूठ बोल चुके होते हैं। जी जी, कोशिश किया करें थोड़ा सा सच बोले, थोड़ा सा, आधा किलो। ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और गुलाम अकबर खास के लिए कहते हैं, शायद आखिरी हो जाए ही सितम उन्हें जो इहो सोचे हर सितम सहंदा रहा सी आईली। और उनके अलावा आरजे सारंग अकबर हमारे साथ ही कहते हैं, एब्सोल्युटली ग्रेट फ्रॉम स्टूडियो ऑफ एफएम 90 नूरियाबाद, कनेक्टेड योर शो। ओके, आपने हमारा प्रोग्राम कनेक्ट किया है, क्या बात है जी, आपको वेलकम कहते हैं। सही से प्रोग्राम कनेक्ट किया करें। नूरियाबाद के लोगों को सही से प्रोग्राम सुनाया करें, ठीक है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ, वेलकम।

अली खास के लिए कहते हैं अंदाजो ही कोने बाबा कूड़न जो टॉपिक ते गालायो था सही सही अली रजा कहते हैं अली रजा आप हमें दुबई से सुन रहे हैं मुख्तार अली शीदी का गाना सुनना चाहते मैं कोशिश करूंगी आप सब भाइयों की फरमाइशें लगाएंगे और गुलाम फरीद बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हाल चाल है आपके सारे लोग ठीक है आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है थैंक यू और हमारे साथी जी अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तू जे

जी बिल्कुल, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। अनवर भाई आपका मैसेज अच्छा है लेकिन ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम कहते हैं। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि ये बड़े एक साथ हो रहे हैं। हाँ हम सब बड़े एक साथ हो रहे हैं, सही बात है। मैं मतलब सही है, कुछ नहीं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए। ऐसा ही कि फिर मुझे सुनने को मिलता है कि आप प्रोग्राम में सिर्फ मैं करजी नहीं, मैं बकरी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और अनवर भाई कहते हैं कि मोहल्ले की मोहब्बत का भी एक अलग ही फसाना था। हाँ जी सही बात है, सही बात है, बचपन बड़ा शहाना था, खिलौने तोड़ देता था नया लेने की जिद में। मुझे भी याद है मैं किस कदर नादान होता था, मासूमियत और तड़प लोटा दे कोई मुझे। वो बचपन के दिन, ना कोई फिक्र थी ना कोई गम था, अब तो बस हसरतें ही हसरतें हैं दिल में। काश वो हो, फिक्री का जमाना फिर आ जाए। हाँ भाई ये काश ही रह जाती हमारी जिंदगी के अंदर। कोई नहीं, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई, ऐसा नहीं कि फिर आपकी जिंदगी में काश के काश ऐसा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अनुआ। सो द डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर जो सैया। अच्छा सगीर कहते हैं झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, मगर फिर भी कभी कभी 100 का फाइन लग सकता है, मगर फ्यूचर में ये कोशिश करेंगे कि ये 100 का फाइन भी कभी ना लगे। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, यू बुद्धि डाडू भलो लगो वाला। और सारंग अकबर कहते हैं कि डन, नूरियाबाद वाले शो को कैसे ज्वाइन करें काइंडली हाईलाइट करें। जी नूरियाबाद वाले आसान तरीके से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एक तो ये हमारा लाड़काना का पेज है, जी लाड़काना FM 88.8, अगर आप नूरियाबाद वाले सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा ये जो फेसबुक ये मिल जाएगा, और वहाँ पर आप आपको ज्वाइन कर सकते, कमेंट करेंगे, शेयर वाइज नहीं तो आप ऐसा कीजिए, अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन आइए, सबसे पहले आपने लिखना है LRK। ओके जी LRK लिखिए, उसके बाद सिंगल स्पेस दीजिए, अपना पूरा मैसेज लिखिए विथ नाम, और उसके बाद अपना मैसेज जो है वो सेंड कीजिए 8881 पर। बिल्कुल जी ये सिंपल से तरीकेकार हमारे सिंपल से प्रोग्राम में शामिल होने के, तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और मुझे बताइए नूरियाबाद में कितने सारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप तैयार हो चुके, हाँ जी भाई जान हम भी लगाएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे ताकि हम भी खूबसूरत हो जाएं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और पहली मरतबा ऐसा वाला सीन बन चुका है कि आपके लिए मार्केट में, और इनफैक्ट देखा जाए तो पाकिस्तान में ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, ये पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जो कि बनाए गए हैं इस तरह, जिनका फार्मूला इतना मजेदार रखा गया है कि ये 2-in-1 है, यानी कि अगर आप ये नाइट क्रीम लगाते हैं तो बस इनफ हो जाता है, आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फेशियल वाला जो निखार है ना वो मिल जाता है, आपको अलग से कोई फेशियल करने की नीड भी नहीं होगी। तो बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप परचेज करेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप खवातीन हैं चाहे आप मर्द हजरात हैं।

डोले की पानी मर्जी ते नर्सरी ना कयो डोलो मते ते चढ़ी वेंदो बस किशोर भाई कहते हैं कि मायूं चवंदियूं आए न तो केड़ी हाय लगी आहे तो के केड़ी हाय लगी आहे न उहा हाय उन हाय जी गाल नया कंदे वैसे त हमी चवंदिया कि जी हाय न वटजे बिल्कुल वैसे उहा हाय न ये भी हाय जका हेलो हाय वारी हुंदी आ किते अगर असा पांजी जुबान में मुंची वन्यू त समझो असा आलसी आयो बिल्कुल मां भी यो ही चवंदी आ और म्यूजिक जी तारीफ कई आ तवा वाह वाह वाह वाह एड़ी गाल कंदा न त पो मां इलाही सारा तां के अंग्रेजी गाना बुधाईंदी मां ₹100 जो एकड़ो फाइन एक्स्ट्रा लगाइंदो त केड़ो तांके डो मिलंदो ₹100 एकड़ो एक्स्ट्रा भरियो ठीक आ समझी होया हुंदा चले पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए कंजूसी कंदा आयो ते तां असानी पोस्ट के लाइक न कंदा आयो अल्लाह से डो दींदा वाला

ओके जी अनवर भाई कहते यदि आम के साथ रोटी खाओ तो सलाद हव अन्या तई अम्मा हलन था छा भला फहीम भाई कहते दादा टॉपिक बताओ मैंने नहीं सुना काम से गया हुआ था टॉपिक छुआ तो तमा मुखे बुधायो अगर एक कूड़ गालाने ते 100 रुपयो फाइन लगे तो तमा अंदाजो लगाए तमा डी में केतरा पैसा जको आ ना वो फाइन दई छडियो आ छो तो मानो हर को डेली इलाही सारा कूड़ गालाइंदो आए ठीक है सो तमा जल्दी जल्दी मुखे बुधायो इन का अलावा तमा सनी पोस्ट के लाइक के शेयर के ना हलो जिन खोड़ सारा मानो सा की प्रोग्राम में ज्वाइन करे सगन खोड़ सारा मानो बुधी सगन तो मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जाने चर्चा हली रहा है इते टाइम थियो है बाबा वन्यू था असा न्यूज़ ब्रेक की तरफ उनका शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुंदा वापसी जल्दी मोटी तमा नींदासी तमा कारे न वंजो इते बैठा होजो असा ओ ही वनी ओ ही मोटू था सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए

0: अब आप सुनेंगे।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
0: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: पाकिस्तान और सऊदी अरब जो दिफाई सहकार जारी है दिफाई मुआहदे ते अमल दरामद लाए वक्त घुरबल है पर रही तर्जमान सजाद हैदर खान चयो आए पाकिस्तान सऊदी अरब की खुदमुख्तियारी सलामती ला हिमायत जारी रख पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियती लॉजिस्टिक सहूलत लाए मौजूद है पाकिस्तान सऊदी से हूसी हमलन की मजम्मत कर चुको है अफगान शागिर्दन से भी पाबंदी वारियों खबरों दुरुस्त न वजीर आजम शहबाज शरीफ ऑटो पॉलिसी 2026 की मंजूरी दई छी ऐलान IMF की मंजूरी बाद कयो वेंदो ऑटो पार्ट्स के बरामदाद वधाइण लाइ आर्मी वैल्यू चेन सां गढ़ण पंज वडा एंकर इदारा ठाहिण की तजवीज बरामदी ऑटो पार्ट्स से दरांदी वेंदी ड्यूटी खत्म करण की भी सिफारिश कयल उर्दन में अमेरिकी अडे ते ईरानी हमलन के नतीजे में अमेरिका के केतन ही फौजी जहाजन के नुकसान पौत है अमेरिकी मीडिया तस्दीक कर छी CBC न्यूज पैंजी रिपोर्ट में जानायो है ते ईरानी मिजाइल हमलन में अमेरिका जा F-15 जहाज A-10 थर्ड बोल्ट मुतासिर थिया जडे कें बे अमेरिकी फौजी के नुकसान न पौतो नायब वजीर आजम इसहाक डार जो तुर्किया के परदेही वजीर से राबतो बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल बोल कई वही है परदेही खाते वजीर मौजूब इसहाक डार हाकान में विच ओवर की तब्दील सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई वही है सूरत हाल से सिफारतकारी वारो सिलसिलो जारी रखने इतफाक वजीर आला हाउस में भुट्टो स्टेम स्कॉलरशिप बाबत प्रोग्राम वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह तालीम वाले वजीर सरदार शाह बेन की शिरकत तकरीब के खिताब कदे सैयद मुराद अली शाह चो तो सिंध के चूंडियल होशियार शागिर्दन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ण जो मौको मिलो है जै लाय रकम सिंध हुकूमत दई रही है तालीम वाले वजीर सरदार शाह ऑक्सफोर्ड वींदड़ पंज शागिर्दन के कुलन से डिग्रियन से गड सिंध जो भी उम्मीदू वागल उम्मीद है तो शागिर्द सिंध जो गाट ऊंचो कंदा सिंध जो घरू वजीर ज़ियाल अंजार तलबीए ते मीर रज़ा केस की जांच कदर अदालती कमीशन आयो पेश ज़ियाल अंजार एडवोकेट जनरल के रवैये ते गैर मशरूत माफी वरती जस्टिस उमर सयाल चवाए तवां के घुराण जो मकसद वारसन अवाम जो एतमाद बहाल करण है एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर जिम्मेवाराणो तसई कामेज हो घरू वजीर ज़ियाल अंजार चवाए त सिंध हुकूमत केस की शफाफ जांच चाहे थी कमीशन के नतीजन ताई पहुंचण जरूरी है जिम्मेवारन के मुंतकी अंजाम ते पहुंचायो वेंदो मीर रज़ा केस की जांच कदड़ अदालती कमीशन पारा डॉक्टर उसामा के जवाब से बेएतमादी जाहिर 15 सितंबर से जाती हैसियत में तलब कमीशन SHO अदील अफजाल हेड मरर जिशान डॉक्टर सीमा ए प्रोफेसर नसीम के 14 सितंबर से तलब कर वरतो कमीशन के रजिस्ट्रार है तो शहरीन भी केस बाबत जान डेण शुरू कर छी है एक शहरी पारा बाउंस अकाउंट में जान फराहम करते राजपोका जाहिर किया है बे शहरी डिजिटल फुटप्रिंट्स बाबत जान डी है एक शहरी केस में मशकूक शख्स की निशानदेही कई है कमीशन जान डींद शहरी की सुणप गुझी रखण जो फैसलो है कराची के एहतसाब अदालत के लिफ्टन में प्लाट के गैर कानूनी अलाटमेंट वे केस में वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल बेन के नोटिस जारी कर छो मुस्तफा कमाल बया 15 सितंबर से तलब एहतसाब अदालत वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल SBCA के अगोणे डीजी इफ्तार कायम खानी अगोणे DCO फजुल रहमान KDA के अगोणे DO मुमताज हैदर KDA के एडिशनल DO सैयद निशात अली रिजवी मोहम्मद रफीक बेन के तलब कयो
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐ गोश्त वधाए अम्हां के खुशहाल बनाए हर पंसार ऐ जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीने फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03003105109।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
0: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
0: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ऐसा कोई कुछ बता दे हमें. वैसे कुछ लोग अगर मार्केट में आप जाते हैं तो आपको ऐसे बताते हैं कि भाई ये वाला प्रोडक्ट ले जाएं, ये वाला ले जाएं, उनको कोई गर्ज नहीं होता कि भाई आपकी किस स्किन जो है वो किस टोन की है, आपकी स्किन के ऊपर किस तरह के प्रोडक्ट लगाए जा सकते हैं, बस उनको अपनी चीजें बेचनी होती है. अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि भाई इन तमाम चीजों से आप बच जाएं, आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने वाले लोग जितने भी, उन सबका पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स मिला है मुझे. यकीन जाने पॉजिटिव क्यों ना रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेडिकेटेड फार्मूला है. और जनाब अगर आप मार्केट जाते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मालूमात लेते हैं, दुकानदार को बोलते हैं भाई साहब डी स्किन ब्यूटी क्रीम दीजिए, और वो आपको कोई सी भी क्रीम पकड़ा देता है, बोलता है हाँ बाबा ये तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम. छोटो कुछ दुकानदार ये भी करना है, अगर तव्हां खे अतो पतो खबर न हुजे या तव्हां खे निशानी का खबर न हूंदी, त तव्हां ज़ाहिर सी ॻाल्हि हुन स्कीम में फसी वेंदा. अगर तव्हां चाहियो था त बाबा थोरो ॿुधाए सिधरा त डी स्किन ब्यूटी क्रीम कीअं आहे, असां वञूं त असां कीअं मालूमात लॻी असांखे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे हीअ. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका हिन जी जेका डबी आहे न, जेको हिन जी पैकिंग आहे, जॾहिं तव्हां हिन जे बॉक्स ॾिसंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे, त उते तव्हांखे हिकिड़ी डॉक्टर माई जो फोटो नज़र ईंदो. ठीकु आहे, डॉक्टर माई जो फोटो आहे त तव्हां सम्झी वञो बाबा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांखे रिज़ल्ट ॾे पई सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल सां. सो ॿ रातूं अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम, त तव्हांखे सफ़ा परफेक्ट रिज़ल्ट मिली वेंदो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका हर स्किन वारो माण्हू इस्तेमालु करे सघे थो. उन खां अलावा अगरि तव्हां मर्द हज़रात आहियो, ख़वातीन आहियो, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु करे सघे थो. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं खूबसूरत खूबसूरत ॾेखारिजो बाबा. अगरि ईअं बि सीन आहे त तव्हां पाण नथा इस्तेमालु करे सघो, चलो कोई मसलो आहे, कोई इशू आहे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु नथा करे सघो, त तव्हां कंहिं पंहिंजे पिणी प्यारे खे गिफ्ट बि ॾेई सघो था. हाओ सही ॿुधव तव्हां, अगरि कंहिं पिणी प्यारे खे तव्हां गिफ्ट कंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, त इन सां बि मुहबतूं वधंदियूं आहिनि. उनखे चओ बाबा त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मार्केट में अवेलेबल थी वई आहे ऐं ॾाढो भलो प्रोडक्ट आहे, तव्हां ज़रूरु इस्तेमालु करे ॾिसो. अॻिलो माण्हू जेके तव्हां गिफ्ट कयूं उहो जॾहिं इस्तेमालु कंदो न, त हुनखे ख़बर पवंदी वाक़ई बाबा, ऐं पोइ तव्हां भले हुनखे हिकु डबी ॾींदा न, पोइ हू पाण पियो वठंदो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम एॾी भली आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बि इस्तेमालु कयो ऐं माण्हुनि खे बि भई ॿुधायो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कर. जंहिंजे घरनि में शादियूं आहिनि या फिर तव्हांजी पंहिंजी शादी थी रही आहे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु शुरू करे छॾियो. ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइण चाहियो था, तव्हां कहिड़े बि सिटी खां तव्हांजो तालुक आहे, कहिड़े बि ॻोठ खां तव्हांजो तालुक आहे, तव्हां घर वेठे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघो था. का घणी महिनत न लॻंदी, बसि तव्हांखे हीउ नंबर जेको ॿुधायां पियो, हिन नंबर ते राबितो करिणो पवंदो. नंबर ते राबितो करण खां फौरन बाद ई तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वेंदी. सो नंबर आहे, नोट करे वठिजो. ओके जी, नंबर है 03-12-50-25-907. बुड़ी 312 पंजाह 25 970. ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09. बुड़ी 332 73-84-309.

बिल्कुल जी, सो नंबर से रातो कयो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो ता वनी आसानी सा परचेज करे जो ठीक आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका ताजे खूबसूरती जला डाडी जरूरी आहे, तमा सब इस्तेमाल करे सगो ता हर स्किन जे मुताबिक आहे आई तमा की यकीन डाडो फायदो पहुचंदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे जका तमा इस्तेमाल कयो पया, बुधायो मके हाल अहवाल किथे पोती केर केर इस्तेमाल करे पयो, इस्तेमाल कया या फिर अन्या खाली सिर्फ बुधो पया, मतलब सोचो पया ता हा असा भी वठी इंदासी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जल्दी कयो बाबा वठी जो आई ती। अगर असा तमा जे मैसेज दी तरफ अचू था ता पैनल ते तमाजा खोट सारा मैसेज जमा थी वया है। पैनल ते असा के ज्वाइन कयो आहे सब का पहली असा के मैसेज मिला कश्मीर से अखलाक बलूच, कहते हैं प्लीज प्ले। ओके तमा गानो लिखियो आ, मां बिल्कुल कोशिश किया दी तमाजी पसंद जो गानो हलाइंदा सी। और हमारे साथ हैं जी सिद्रा मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम, वलेले सलामत बेवस बलूच दरगाह साईं जमाल शाह मोरो से, आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज माशाल्लाह इलाही भली आहे। सो थैंक यू वेरी मच प्यारा भा, तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कंदा रहिजो। और शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खान रिंद से, शायर गाजी खान रिंद हैं, फैजान अली रिंद। ओके जी, आपने लिखा है कि आपका शो जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच जी भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। ये मौजूद है, हाय आप ही, हेलो आप कैसी हैं?

सुल्तानपुर से सितारा हमारे साथ है। ओके जी, सितारा कहती है योर शो इज वेरी नाइस, आप ही जान प्लीज प्ले मास्टर मंजूर का सॉन्ग सुनाओ। ओके मां दिसां थी तमां जिलाए मास्टर मंजूर जो भलो गानो हलाए वठना सी, ठीक है। और ये हमारे साथ है, अच्छा जब आप पैनल पर मैसेज किया करें ना तो अपना नाम लाजमी लिखा करें, बिना नाम के जब आप मैसेज भेज दें तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ये किसने मुझे भेजा है। अच्छा गुलशेर बाबर हमें कहते हैं कि मुजम्मिल बाबर विलेज अल्लाह वरायो बाबर का तां सजो प्रोग्राम बुधो पिया, तां जो मैसेज मुखे लगे तो अगे ते मिसिंग पार्ट थी वयो आ पर मुखे एतरो मिलियो आहे सुभान जो मोहब्बत हुआ तां प्रोग्राम बुधो पिया। और ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम रोज सुनता हूँ, वेरी नाइस, आपकी मुस्कुराहट अच्छी है। ओके जी, नाम तो अपना लिखना भूल ही गए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं जी। जी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिएगा। और हमारे साथ है हमारी फजली के कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं। कहती सलाम टू माई स्वीट हार्ट मोम एंड कायनात और सब सुनने वाली सिस्टर्स को। और कहती टॉपिक क्या है जानी, टॉपिक मैंने फजली आपसे पूछा है, वैसे आपने नहीं सुना इतना टाइम इतने टाइम से प्रोग्राम सुन रही है तो सवाल हाँ बिल्कुल रिपीट करते हैं, जो लोगों ने अभी भी प्रोग्राम सुना है स्टार्ट किया होगा उनको भी पता होना चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि हम डेली बेसिस के ऊपर कितने सारे झूठ बोलते हैं, ना बोलते ना बिल्कुल से। तो आप मुझे बताएं कि अगर फर्ज कर लीजिए एक झूठ बोलने पर 100 रुपए की फाइन लगती तो आपको क्या लगता है कि आपका एक दिन का हिसाब काथे वनी पहुंचे? हाँ तुम केतरा कूड़ गालाइंदा है तुम्हें डिपेंड करे तो मुझे बुधायो हक डी में तुम्हारा हिसाब किथे पहुंचे या बुधायो तो खबर तो पवे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कया कोन अगर मैसेज कर पाया तो यो भी लाजमी बुधाए छो। उन अलावा ही डाढ़ो भलो गानों लिस्ट में लगाया सो गानों बुधूँ था।

जी मकसूद मला कहते हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है सिद्रा मुस्कान, मुझे शमन का गाना सुनाना। बिल्कुल जी, आपको शमन का गाना सुनाते हैं और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं सारे लोग, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी बता दिया करें, जैसे मकसूद मला ने बता दिया है। ओके जी, आपको वेलकम कहा जाता है। और साथ ही साथ बाकी जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए।

ओके जी, गानों मां समझने की कोशिश क्या पई पर चलो मोरो तो समझ में आयो, पर अगते अलाए छा तो जे मोरो शहर छडे वने तो या अचे पयो गाल समझ में कोन आई। चलो मोरो में भी तवा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिली वेंदी, अगर ता मोरो वनियो पया या मोरो छडे पया त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरूर वठदा वंजो पाण सा गडे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेके मानु इस्तेमाल कन पया बाबा सवा सोणा थी वया, तो तवा भी इस्तेमाल कयो सोणा सोणा थी वने, रीस कोन थी अचे छा भला। अच्छा गुलाम फरीद बलोच लिखते हैं कि कुछ चीजें मालूम नहीं महसूस की जाती हैं, जैसा कि किसी की जिंदगी में अपनी जगह, बदलता रवैया, लहजे में बेजारी और अजनबियत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कासिर खान कहते हैं राजा लंदन का ओएसटी लगा दो, बिल्कुल सी लगाते हैं। फरवा आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमान भाई लिखते हैं कि नेटवर्क खराब था नी तो हर सवाल का जवाब है बुआ जी क्या मतलब अच्छा नसीम गुलाम हमारे साथ हैं, कहते हैं कि जब वक्त खराब चल रहा होता है तो पीछे से हंसने वाली आवाज जानी पहचानी लगती है। क्या बात है जी, क्या बात है, कितनी कमाल बात आपने बोल दी है और बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहा जाता है। किशोर भाई कहते हैं कि अगर तू चाहे पोस्ट के लाइक एंड शेयर करण वारन के 100 रुपया ॾींदसि त ॾिस केतिरा लाइक एंड शेयर था मिलनि बिल्कुल तां सही था चओ। और रमजान भाई कहते हैं कि सलाम बहनाओ, कैसी मुल इस्लाम अदस, मैं कल आपसे गाने की फरमाइश कर चुका था। बिल्कुल जी, आपने गाना बोला मेरे ही पास, तुम इतने थके हुए गानों की फरमाइशें मुझसे करते हैं तो वो मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो अच्छी अच्छी गाने फरमाइश किया करें जो सुनकर सबको अच्छा लगे। और नसीम गुलाम भाई कहते हैं कि गोठ अली बख्श जकड़ो नूरियाबाद से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं घणे टाइम खां पोइ नजर आया आयो नूरियाबाद FM ते असां थकिजी वियासीं इंतजार करे। हाँ कुछ टाइम पहले वाकई नूरियाबाद मुझे प्रोग्राम यही कनेक्ट थी, यही प्रोग्राम कनेक्ट थो है, सो थैंक यू तवा के याद आया, मुख्य लगो नूरियाबाद वाले मानन विसारी छ थैंक यू बुद्धि करे इलाही सुठो लगो, थैंक यू। अच्छा तां हाणे नूरियाबाद में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम बस वञो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से मालूमात वठो, तव्हां खे मिली वेंदी, ऐं मिलण खां पोइ तव्हां मूंखे ॿुधाइजो त भाजी असां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आया आहियूं। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमाल करण तरीक़ेकार छा आहिनि, या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां छो इस्तेमाल कयो पिया, इहो बिल्कुलु सॼे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदी अचां पई। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द मायूं हर कोई लॻाए सघे थो, इहा बि जेका कंफ्यूजन हूंदी आहे त बाबा असां लॻाए सघूं था या नथा लॻाए सघूं, छो त काफ़ी माण्हुनि जी स्किन घणी सेंसिटिव हूंदी आहे, त तव्हांजे लाइ बि आहे बाबा, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे तयारी ईअं कयो वियो आहे जो हर स्किन जे माण्हू लॻाए सघे थो, ऐं मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, स्किन जा जेके डॉक्टर हूंदा आहिनि उन्हनि ई फार्मूलो तयारु कयो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 क्रीम आहे, तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे रिज़ल्ट मिलंदो अहिड़ो ॼण तव्हां फेशियल कराया आहियो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम

0: बिल्कुल जी असा तुझे ताबेदार पर जदी ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठना पो असा के गाल खबर पंदी त वाकई ता ताबेदार आयो अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि दादा ऐसे टॉपिक रखकर आप ये जानना चाहती हैं कौन कितना झूठा है। मेरा आंसर भी तकरीबन 1000 पक्का हाल यो सही मतलब लिमिटेड आयो थोड़ो एडो ना है यानी कि तां वेही अगर ई हुजिया वाकई मानू एकड़ो कूड़ गला है हां त 100 रुपयो फाइन देनो पवेया त दोस्तन में वेही करे खबर ते जे डराड़ी मानू जना उ केड़ी डराड़ाणा त तो खबर आ म केडो अमीर आ म डेली 2-3 हज़ार जो कूड़ गलाइनो आ मानू चवंदा वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाकई अमीर आहे डेली 2-3 हज़ार जो कूड़ ॻाल्हाए थो
1: मुंहिंजी त शराबी आहे ओ अखियुनि जा ठार सबेदार
0: ऐं मां त वरी कुझु माण्हू अहिड़ा बि ॾिठा आहिनि जेके कूड़ ॻाल्हाईंदा त उन्हनि खे न फ़ख़ुरु महसूसु थींदो त असां कूड़ ॻाल्हायो आहे ॾिसो ॾिसो मां केॾो भलो कमु कयो आहे पर हालांकि इहो भलो कमु न आहे बाबा कूड़ घटि ॻाल्हाईंदा कयो ऐं उन खां अलावा अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था त बिल्कुलु मूंखे ॿुधायो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणण वारा माण्हू सफ़ा सुहिणा थी विया आहिनि इन ॻाल्हि में को शक कोन्हे को डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिन जिन लॻाई आहे मां उन्हनि खां पुछा कयो उन्हनि चयो वाह साईं वाह अहिड़ो प्रोडक्ट असां कॾहिं कोन लॻायोसीं जेको असां हाणे लॻायूं था यानी डी स्किन ब्यूटी क्रीम

0: सलाम फरीद भाई, लिखते हैं कि सारे दुनिया के सारे लोग आपको अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ आपका रब ही है जो आपको अपने फायदे के लिए चाहता है। जो इस बात से एग्री करता है वो रिएक्ट करें दिल लगाकर। दिल लगाकर तो खैर आप मेरी पोस्ट को रिएक्ट कीजिएगा, और वैसे हम एग्री करते हैं इस बात से। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और उनके अलावा नसीम गुलाम भाई कहते हैं, सॉन्ग सुनाए, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, माँ कोशिश क्या थी। वैसे हिनमल ताईमा केंजी भी फरमाइश कौन लगाई लिस्ट में, अज माइयो मूड ठाया यस तमा केंजो भी गानो जो प्रोग्राम में कौन हलाइंदे अगते डिसम था
1: वो अखे ले जाथार सबेदार
0: छोड़ो बाबा फरमाइशन थी ब्रेक लगाइंदा कयो ब्रेक समझो था ब्रेक ते पैर हो जे। बिलाल अली हमारे साथ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम, आपको वेलकम कहा जाता है। कहते काश कोई मेरा भी वेट करता। जी जी बिल्कुल, आप हमारे प्रोग्राम में आया करें डेली। और संजय जयपाल हमारे साथ है, संजय जयपाल आपको भी वेलकम हो गया। और नसीम भाई कहते असां अज वठी वठूं था, अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा अज वठूं था, बिल्कुल वाह वाह वनु वनु वठी चो वठी चो। हिदायतुल्लाह कहते कि मुझसे नहीं विसरता तुम्हारा प्रोग्राम, चाहे नूरियाबाद पर हो या 88 लाड़काना पर। वैसे मैंने भी देखा है ऐसे लोग जो कूड़ मारते हैं और अपने अपने पर नाज करते हैं। हाँ बिल्कुल, या गाल आए हकीकत आए अल्लाह पर। चलो खैर आ तमा बुदायो हाल अहवाल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम कॾहिं था लॻायो। अच्छा ये है ठरी मीरवा से मोहम्मद इब्राहिम खास के लिए, कहते अदी सदरा
1: अखिर
0: अच्छा कहते हैं खैरपुर वारा कावड़ जी वया आहन, खैरपुर वारा कावड़ जी वया आहन ई हरू भरू। चलो राजी ई थी ना जरी तमा उनन के डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कदा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम खैरपुर वारन के तोहफो दियो बाबा, खैरपुर वारा जल्दी में राजी थी वेना तां सा। और बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ है। और ये कहते हैं हाय मैडम आप कैसी है, प्लीज प्ले शमन का गाना। और हसन देपारजा से सिंध की रानी आप कैसी है, हसन अली हसन मेहरापुर से हमारा शो सुन रहे, ओके जी आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। मेहरापुर में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो जाइएगा और परचेज कीजिएगा। टाइम हुआ है जनाब यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आप भी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड इन पीपल लिसनिंग। व्हाइट एश डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और हसीन हो जाइए।

0: खूबसूरतीअ जो असल राज़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

खूबसूरती का असर सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: जी आप सुन रहे हैं वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. क्यों हिला दिया ना
1: गार्ड गद रखन दो चार आहा गोठ में मां जमींदार आहा गार्ड गद रखन दो चार बुद्ध बुद्ध.

ओके तो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, और जो लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया या फिर स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली नारी टूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप हमारे साथ मौजूद हैं।

ओके कितना प्यार गानो सुनाया डसो डसो जरी ता फरमाशु न कंदा ना पो माइडा भला भला ता के गाना बजराइंदी आया अगरी सो मास्टर मंजूर जी गाने जी भी फरमाइश हुई त मो ही रैंडमली गानो जे को लिस्ट में लगाए शुरू इन गाने के बुदना सी उन के अलावा अगर तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करन चाहे था त ता के थोरो बुधाइनी हला त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे का है तमा जी खूबसूरती दिलाए छो जरूरी है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग बड़े खुश हुए भाई अपनी जिंदगी में तो हम भी ये चाहते हैं कि आप जो लोग हमें सुन रहे हैं आप सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा पाकिस्तान में प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बन चुका है जो कि भाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालकात में भी आपको मिल जाएगी और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर मिनी बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है अल्फा आर्बुटिन है कोजिक एसिड है ग्लूटाथायोन है ये तमाम चीजें मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम बनी है आप ये तमाम चीजें इमेजिन कीजिए कि कितने ही अच्छे कोई प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें ऐड की गई होंगी वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर भी ऐड है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेशक लगाइए और ये जनाब 2-in-1 क्रीम है यानी कि ये नाइट क्रीम है लेकिन आपको जो रिजल्ट देगी वो फेशियल वाला देगी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर रही है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए वैसे कहते हैं ना खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जिल्द की मुनासिब केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आप भी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में एक खूबसूरत इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छा ऑप्शन है जनाब और अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बना देगी और बेहतरीन इंतखाब भी हो सकते हैं अगर आप अपनी जिल्द को नरम मुलायम मॉइस्चराइज रखना चाहते हैं अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं खूबसूरती में आप हमेशा आगे रहना चाहते हैं रिंकल फ्री स्किन चाहते हैं एक्नी फ्री स्किन चाहते हैं बेदाग गोरी गोरी स्किन चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा क्योंकि अच्छी तरह आपकी स्किन केयर हो जाएगी और आपके जल्द के चेहरे की जो ताजगी है ना और निखार है ना वो भी वापस आ जाएगा खूबसूरती सिर्फ मेकअप का नाम नहीं होता ये मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ बल्कि आपकी जल्द की जो मुनासिब केयर होती है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो रोजाना अगर आप अपने लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं कि भाई आप बैठ के फेशियल लगाएं ये करें वो करें या फिर उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं तो बस एक ऐसा काम करना है आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करनी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने के बाद जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एहसास हो जाता है वाकई भाई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये मेडिकेटेड फार्मूला है और हर स्किन के ऊपर है आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा ठीक है।

चले। ओके जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि आप एंजॉय कर रहे हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी, हमने फरमाइश की थी नाहिद अख्तर के गाने की, मैंने शायद उस दिन या अगले दिन आपकी फरमाइश का गाना लगा लिया था, कहते हैं कि चले हाँ आपका गाना जो है ना हम सुन लेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और ये जनाब कहते हैं मैडम कैसी है आप, प्लीज प्ले शमन का गाना। अली हसन देपारजा से हमारे साथ है, बिल्कुल अली हसन भाई आपके लिए गाना लगाते हैं, थोड़ा सा सबर कीजिए जरा। अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं कि जॾहिं गिफ्ट करी आप भाई छो तव्हां सभिनी खे गुमाना त मां तव्हांखे गिफ्ट कंदसि, बिल्कुल मां तव्हांखे गिफ्ट न कंदमि, तव्हांखे थोरो ख़र्च करणो पवंदो। ख़र्च कयो वञो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो, या कहिड़ी शराफ़त आहे सभु मुंहिंजो आसिरो करे वेठा आहियो, मां हिते दुकान खोलियो आहे छा भला। बाबा तव्हां सभिनी जे करीबी जन स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे, बसि थोरो कष्ट कयो वञो ऐं वञी वठी अचो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मुनासिब क़ीमत में मिलंदी, एॾो कोई इन जो रेट कोन्हे को, एॾी का इन जी क़ीमत कोन्हे का जो तव्हां अफोर्ड न करे सघो, मुनासिब क़ीमतूं आहिनि जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां वठंदा त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो, समुझो।

नसीम भाई कहते हैं कि कूड़ गालहाइण पहिरियां गुनाह आ पर फाइन लगे तो मानो कूड़ गालहाइण छडे वेंदा बिल्कुल ता सही था चो और किशोर भाई कहते दादा तो कदे सोचो आ तोके केतरो फाइन लगंदो मां भी मड़ई वे ड्राडण अंत 3-4 हज़ार जो कूड़ त मां डेली गले थी मजाक ते गया कोशिश कंदा आहियूं त कूड़ न ॻाल्हायूं समझो था कोशिश कंदा कयो अच्छा रिज़वान भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है अच्छा नसीम भाई कहते हैं कि वक़्त बदिलजी वेंदो हालतूं भी बदिलजी वेंदियूं पर जेके दिल में घर करे वेंदासीं माण्हू कॾहिं बि विसरी न आहिनि सघंदा इज़त लफ़्ज़नि सां न किरदार सां मिलंदी आहे मोहबत दुआनि सां न वफ़ा सां साबित थींदी आहे वाह वाह वाह वाह वेरी नाइस अच्छा बिलाल कहते हैं कि समझ नहीं आता किसी को अपना कहूं सब अपने होकर भी पराए लगते हैं हाँ भाई हाँ या गाल आहे यो तां सही था चो गानो न अपनो का मेला है पर असा अकेला है सो बिल्कुल उहा ही गाल असांखे ते आस पास सब पंहिंजा नज़र अचनि था पर अलाए छो ईअं दिलि चवे थी त अकेला आहियो ओके सो हिकिड़ो ही ॾाढो भलो फ़ाइज़ा जी आवाज़ में गानो लॻायो आहे अॼुकल्ह ही गानो मूंखे वणे थो सो अचो त हिन गाने खे ॿुधूं था

ना बाबा इडी भी गाल कोने का। अच्छा रमजान भाई भी आसरो करे वेठो आता दी मुखे डीस कंप्यूटर क्रीम गिफ्ट कंदी। अच्छा अखलाक भाई कहते हैं कि फाइबर का जमाना है, अगर सिदरा का शो सुनना चाहते हैं तो फाइबर लगायो बाबा फाइबर। और फहीम भाई कहते हैं कि भाऊ आज हम पर ना जुल्म हो गया है, ना नेट चल रही है, ना वाईफाई चल रही है, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं ऑफिस में। अरे भाई हाँ ये मसला कभी कभी हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं, आप डीस कंप्यूटर क्रीम लगाइए। हिदायतुल्लाह आप

हां जी दिल बच्चे बच्चे बच्चे वाजो गानो तवां के भी सुठो लगो हुंदो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई ना वा भी तांगे सठी लगंदी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ई सुणा सुणा थी वणो अच्छा मर्द मायो सभी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगन था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जगह ता खबर आ ते मेडिकेटेड फार्मूला आ यानी के डी स्किन ब्यूटी क्रीम के स्किन जा जके डॉक्टर हुंदा है ना उन्हने तैयार कयो आ हे यानी कोई भी टेंशन जी गाल ना है ता बाबा इने में केमिकल हुंदो हे हुंदो हो हुंदो ता बेफिकर थी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो ता।

हलो बाबा हलो छुट्टी करायो फायजा वारो गानो भी लिस्ट में आए सो बिल्कुल शमन जो गानो भी बुधना सी अपास महरा सा सगर मौजूद है अपास महर ताजो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया बाबा और कौन हमारे साथ है फरवा हमारा शो सुन रही है फरवा आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया कर दें जरा थोड़ा टाइम बचा है हमारे पास अच्छा यानी तहां सब जिद करे बैठायो न क्यों बाबा जिद न कयो जिद न कयो मोहब्बत न तो न न किशोर भास 3-4 हज़ार रही एडो ज्यादा न टेंशन न कयो परवा कहती आप ही मुझे भी हां जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप तोहफा दे सकती हैं सबको दें ठीक है और मुखा आसरो न कयो बाबा स्मार्टो गोपांग कहते हैं वाह सिद्रा वाह कंबर सिटी से सुन रहा हूं वेरी नाइस थैंक यू और फायजा का गाना आपको अच्छा लगा बहुत शुक्रिया बुद्धू था बाबा बुद्धू था अच्छा अदो कहते तो के जड़े लगे तू अकेलो आही तो बस दिल ते हथ रखी यह हकीकत है बहुत शुक्रिया थैंक यू अपनायत के लिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लिए भी क्योंकि आप इस्तेमाल करने वाले हैं ओके जी और इसी के साथ हम आप लोगों से इजाजत भी लेंगे क्योंकि हमारे जाने का वक्त करीब आ चुका है वरना

ख़बर न तव्हां चवंदा त बाजी तव्हां त गानो ॿुधण ॾियो ई कोन था सो तव्हांखे गानो ॿुधण ॾींदासीं तव्हांखां इजाज़त वठूं था वरी तव्हां सां मुंहिंजी मुलाकात जेका थिए पई पंज बजे वारे प्रोग्राम में थिए पई सो पंहिंजो हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया आहिनि जंहिंजा गानड़ा शानड़ा रहिजी विया सभिनी खां माज़रत कयूं था मोकिलाणी नाहे बाबू सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ਜਾ ਉਸਤਾਦ ਸੁਨਜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਵਕੀਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ
2: ਸਿੰਧ ਬਾਰ ਜੇ ਸਰ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਤਹਿਦ ਸਿੰਧ ਜੋ ਵਾਜ਼ੇ ਪੈਗਾਮ ਸਿੰਧ ਬਾਰ ਜੇ ਸਿੰਧ ਯੂਨਿਟੀ ਡੇ ਵਾਰੇ ਸਰ ਤੇ ਵਕੀਲਨ ਪਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਾਇਕਾਟ ਐ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਚੀ ਖਾਂ ਕਸ਼ਮੋਰ ਐ ਕਾਰੂੰਜਰ ਖਾਂ ਕੇਟੀ ਬੰਦਰ ਤਾਈ ਕੋ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੈਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਮੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਥਿਓ कराची हैदराबाद मीरपुर खास शहीद बेनजराबाद सखर ए लारकाने डिवीजन के समूर नंडन वरन अदालतन में को भी केस न हलो नंडन वरन शहर में वकील का मुजाहरा सिंध खिलाफ साजिशों बंद करने मुतालबो पाकिस्तान ए सऊदी अरब जो दिफाई सहकार जारी है दिफाई मुआदे ते अमल दरामद लाए वक्त हुरबल है पर रही तर्जुमान सज्जाद हैदर खान है पाकिस्तान सऊदी अरब की खुदमुख्तियारी सलाम के लिए हिमायत जारी रख पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियती लॉजिस्टिक सहूलत लाए मौजूद है पाकिस्तान सऊदी से हौसी हमलों की मजम्मत कर चुको है अफगान शागिर्दन से भी पाबंदी वाली खबरों दुरुस्त ना वजीर आजम शहबाज शरीफ ऑटो पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे छी है ऐलान आईएमएफ की मंजूरी बाद करो ऑटो पार्ट्स की बरामद बढ़ाने लाए आर्मी वैल्यू चेनल्स का कंडन ए पंज वड़ा एंकर मैन्युफैक्चरिंग इदारा ठाण की तजवीज बरामदी ऑटो पार्ट्स से दर आंदी ड्यूटी खत्म करण की भी सिफारिश थियल उर्दन में अमेरिकी अडे ते ईरानी हमलों के नतीजे में अमेरिका के केतर ही फौजी जहाजन के नुकसान पौतो है अमेरिकी मीडिया तस्दीक कर छी है सीबीसी न्यूज पैंजी रिपोर्ट में जाना है ते ईरानी मिसाइल हमलों में अमेरिका जा F-15 जहाज A-10 थर्ड बुलेट मुतासर थे आए जडे ते कें भी अमेरिकी फौजी के नुकसान न है पौतो नायब वजीर आजम इसहाक डार जो तुर्किया के परदेही वजीर सां राबतो बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल बोल कई पई है परदेही खाते मूजिब इसहाक डार ए हाकान विच में ओभर की तब्दील थींदड़ सूरत हाल के ख्याल की डेवट की वही है सूरत हाल से सिफारतकारी वो सिलसिलो जारी रखने ते इतफाक वजीर आला हाउस में भुट्टो स्टेम स्कॉलरशिप बाबत प्रोग्राम वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह तालीम वाले वजीर सरदार शाह इंडियन की शिरकत तकरीब के खिताब कदे सैयद मुराद अली शाह चवा तो सिंध के चूंडियल हुशार शागिर्दन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जो मौको मिलो है जै लाए रकम सिंध हुकूमत दई रही है तालीम वाले वजीर सरदार शाह है ऑक्सफोर्ड ईंद पंज शागिर्दन के कुलन से डिग्रन से गड सिंध जो भी उम्मीदू वागल उम्मीद है शागिर्द सिंध जो गार्ड ऊंचो कदा सिंध जो घरू वजीर ज़ियाल अंजार तरबियत ते मीर रज़ा केस की जांच कदड़ अदालती कमिश्नर एडवोकेट ज़ियाल अंजार एडवोकेट जनरल के रवैये ते गैर मशरूत माफी वठी छी जस्टिस उमर सियाल चवाए तवां के घुराण जो मकसद वारसन अवाम जो एतमाद बहाल करना है एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर जिम्मेवाराणो तसेक आमेज़ हो घरू वजीर ज़ियाल अंजार चवाए सिंध हुकूमत केस की शफाफ जांच चाहे थी कमीशन जो नतीजन ताई पहुंचण जरूरी है जिम्मेवार के मुंतकी अंजाम ताई पहुंचायो वेंदो सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद की सदारत है ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास लॉजिस्टिक पार्क के कयाम ए 500 ईवी बसिस के खरीदारी लाए काबीना का मंजूरी वठण जो फैसलो शर्जील इनाम अहमद चवाए तो लॉजिस्टिक फार्म जो कयाम कराची वासना इनकलाबी कम हों शहर तई हैवी ट्रैफिक जो दबाव घट

0: मीरदा केस की जांच कर अदालती कमीशन पारा डॉक्टर सोमन के जवाब से डेट मादी जाहिर 15 सितंबर से जाती हैसियत में तलब कमीशन एसएचओ अदील अफजाल हेड मॉरल जिशान डॉक्टर सीमा प्रोफेसर नसीम के 14 सितंबर से तलब करे वरतो। कमीशन के रजिस्ट्रार है शहरी के केस बाबत जान डेण शुरू कर छी है। एक शहरी पारा बॉन्सिस अकाउंट के जान फ्राहम करने राज को जाहिर किया है। बे शहरी डिजिटल फुटप्रिंट्स बाबत जान डी। एक शहरी केस में मशकूक शख्स की भी निशानदेही कई है। कमीशन जानीदर शहरी की सुणप गुजी रखने को फैसलो किया है। कराची के एहसाब अदालत क्लिफ्टन में प्लाट की गैर कानूनी अलाटमेंट वे केस में वफाक वजीर मुस्तफा कमाल बेन के नोटिस जारी कर मुस्तफा कमाल बया 15 सितंबर के तलब एहसाब अदालत वफाक वजीर मुस्तफा कमाल एसपीसीए के अगोणे डीजी इफ्तार कायम खानी अगोणे डीसीओ फजुल रहमान के डीए के अगोणे डीओ मुमताज हैदर के डीए के एडिशनल डीओ सैयद निशात अली बिजली मोहम्मद रफीक बेन के तलब कर। नवा सूबा तमाशो ए रोशो है ही सूबा ठाण न पर सूबा खत्म करने की साजिश है। कुछ मानू कराची के सिंध का धार कर चाहन था। एसटीपी सरबराह डॉक्टर कादिर मंसी जवाय त कराची की मिल्कियत आर्मी अहमियत कब्जे वाली साजिश कें भी सूरत में कबूल न कंदी। वन यूनिट ठाए सूबा खत्म कया वा हुआ इन वक्त भी नंढा नंढा यूनिट ठाण कब्जो कर साजिश है। सजी सिंध का आवाज है कौमी बकाल है पुरमन तारीखी जिदोजहद कई हुई। टंडोलियार के डीसी ए सेहत खाते में तकरार तेज थी वो एमएस का डीएचक्यू के 37 डॉक्टर समेत स्टाफ के 98 मुलाजम इस्तीफा दई छी। डॉक्टर्स एमएलए पारा ओपीडीज जो बायकॉट डीसी के गैर जरूरी मुदाखलत बंद करने जो मुतालबो एहतियात जो सिलसिलो जारी रखने जो चेताव।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: असली चीजान चारों मसालों की सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जी जान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जी जान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद जी जान चारों मसालो जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
5: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000-3385-69।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: जेके भी इन्हनि जा नापाक इरादा आहिनि सिंध खे तक़सीम करण जा, उन जे असां बिल्कुल ख़िलाफ़ आहियूं।
1: सिंध जा माण्हू सम्झनि था उन जे वादानत ते वार आहे।
2: असां सिंधी माण्हू ईंदो, असां सिंध सां गॾु आहियूं, कंहिं बि असां पाण सां गॾु कॾहिं बि न बीहंदासीं।
3: सिंध जो अवाम न अॻे कॾहिं सिंध खे तक़सीम थियण ॾिनो आहे, न हाणे ॾींदासीं।
4: कुझु बि थींदो सिंध वारनि खे ॾींदासीं,
5: पर सोचूं था त सिंध जी विरासत न, पर असां सिरनि जी विरासत कंदासीं।
6: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ करण जी साज़िश आहे।
7: धरतीअ जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं उनजो इहो सबूत आहे जो ख़्वाब ॾिसंदा सिंध जो टुड़ण जा, इन जा इहो ख़्वाब जा चकनाचूर कंदासीं। सिंध जा मज़दूर, सिंध जा हारी, सिंध जा उस्ताद, सिंध जा शाइर, अदीब, वकील फ्रंट ते हूंदा।
8: सिंध बार जे सर ते सिंध जा वकील हिकु आवाज़, मुत सिंध जो वाज़े पैगाम। सिंध बार जे सिंध यूनिटी डे वारे सर ते वकीलनि पारां अदालती कार्रवाइनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा। कराची खां कश्मोर ऐं कारूंजर खां केटी बंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणी डिवीज़न जे समूरनि नंढनि वॾनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा, सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करण जो मुतालबो। वज़ीर आला हाउस में भुटो स्टेम स्कॉलरशिप बाबति प्रोग्राम। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह, तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह ऐं ॿियनि जी शिरकत। तकरीब खे ख़िताब कंदे सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध जे चूंडियल होशियार शागिर्दनि खे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ण जो मौक़ो मिलियो आहे, जंहिं लाइ रक़म सिंध हुकूमत ॾेई रही आहे। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त ऑक्सफोर्ड ईंदड़ पंज शागिर्दनि जे कुलनि टे डिग्रियुनि जा गॾु सिंध जूं बि उमीदूं वाघियल आहिनि। उमीद आहे त शागिर्द सिंध जो गाट ऊचो कंदा। सिंध जो घरू वज़ीर सयाल अंजार तलबीअ ते मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमिश्नर पेज सयाल अंजार एडवोकेट जनरल जे रवैये ते गैर मशरूत माफ़ी वठी छॾी। जस्टिस उमर सयाल चयो आहे तव्हां खे घुराइण जो मक़सदु वारसनि ऐं अवाम जो इतमाद बहाल करणु आहे। एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर ज़िमेवाराणो आहे। घरू वज़ीर सयाल अंजार चयो त सिंध हुकूमत केस जे शफ़ाफ़ जांच चाहे थी। कमीशन जे नतीजनि ताईं पहुचणु ज़रूरी आहे। ज़िमेवारनि खे मुंतक़ी अंजाम ते पहुचायो वेंदो।
9: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-3385-69।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03200-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836।
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: अॼु त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोणी, वाह वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं, हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: कंदासीं ऐं उन जो सबूत आहे जेको ख़्वाब ॾिसंदा सिंध जो टुणवंजाह इन जा इहो ख़्वाब असां चकना चूर कंदासीं। सिंध जा मज़दूर, सिंध जा हारी, सिंध जा उस्ताद, सिंध जा शाइर, अदीब, वकील फ्रंट ते हूंदा।
1: सिंध बार जे सड़ते सिंध जा वकील हिकु आवाज़ मुतहिद सिंध चौबासे पैगाम सिंध बार जे सिंध यूनिटी डे वारे सड़ते वकीलनि पारां अदालती कार्रवाईनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा कराची खां कश्मीर ऐं कारुंजर खां केटी बंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर, शहीद बे नज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन जे समूरनि नंढनि वॾनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। नंढनि वॾनि शहरनि में वकीलनि जा मुज़ाहिरा सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करण जो मुतालबो।

0: अलॉटमेंट वाले इस्तीफा कमाल ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी करे छॾियो। इस्तीफ़ा कमाल ऐं ॿिया 15 सेप्टेम्बर ते तलब एहतसाब मतलब।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: नजर अर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइस क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन, धब्बे जुड़िया का सोहरे और लगाए। ट्राई आवर प्रोडक्ट्स ब्यूटी सोप, मिल्क राइस, एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
3: खुशहाली जन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
4: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 0242-460-1100।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-8569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: सिंजा पंज शागिर्द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में फुल फंडेड स्कॉलरशिप पाण में सुभारा। कामयाब थियलनि में फैज़ा रहमान, अमृता चांडियो, मीर मुसफ़र अली, परजात शाहिद हसन ऐं जुनैद अहमद मेमण शामिल। वॾे वज़ीर मुहम्मद अली शाह भुट्टो स्टीम स्कॉलरशिप प्रोग्राम जी तक़रीब खे ख़िताब करे चयो त स्कॉलरशिप हासिल कंदड़ शागिर्दनि साबित करे छॾियो आहे त मेरिट कंहिं बि जाग्राफ़ी हद जी पाबंद न आहे। शागिर्दनि जी कामयाबी नई
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601100।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000305109 03000315109।
5: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अवां के खुशहाल बनाए। हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
6: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
7: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ 2-4-6-9-12 inch में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014-5431-4056 ऐं तौकीर अहमद 03006

0: जो या जेके लाइफ स्टाइल जी मां चयो घणनि जो विहण जो घणो कमु हूंदो आहे ऐं वरी वरी शयूं बि अहिड़ियूं इस्तेमालु कंदा आहिनि चांहि जो इस्तेमालु घणो हूंदो आहे त इन्हनि शयुनि सां इहा शइ वधीक जेको आहे सो तकलीफ़ वधी वेंदी आहे इन जे करे इन जो ख़ासि ख़्यालु रखणु घुरिजे हमेशह जेकॾहिं कंहिंखे अहिड़ी तकलीफ़ थिए त थधियूं शयूं इस्तेमालु करे खीर जो इस्तेमालु ज़्यादा करे जूसिस जो इस्तेमालु ज़्यादा करे फ्रूट्स जो इस्तेमालु ज़्यादा करे सब्ज़ियुनि जो इस्तेमालु ज़्यादा करे ख़ासि करे कारे मिर्च में सायूं तूरियूं मुङनि जी दाल ऐं खीर जो इस्तेमालु ॾही लस्सी जो इस्तेमालु इहो फ्रूट जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो खोड़सारो जेको आहे सो इलाज जेको असां होम्योपैथिक दवाउनि जे रस्ते ॿियनि बीमारियुनि में बि कंदा आहियूं त हुनखे रिलीफ थींदो आहे मुंहिंजो मशवरो बि इहो ई हूंदो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिए त हिकु ऑपरेशन न कराइनि छा थींदो आहे जो ऑपरेशन खां बाद में वरी इहा तकलीफ़ नमूदार थी वेंदी आहे इन जे करे बग़ैर ऑपरेशन जेकॾहिं तव्हां तकलीफ़ खां बचणु चाहियो था त यादि रखो सिर्फ़ु होम्योपैथिक इलाज वरी महिरबानी
1: बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो बवासीर जा जेके मेल आहिनि या फीमेल परेशान ईंदा आहिनि उन्हनि खे परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे हिकु मुल्की सतह जो सिंध लेवल जो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु जेको बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज करे थो उन्हनि खे ऑपरेशन कराइण जी बिल्कुलु बि ज़रूरत नाहे बादी बवासीर हुजे या खूनी बवासीर हुजे 0301 9698 51 लाइव कॉल जो नंबर आहे कॉल जे तरह वेंदासीं ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سلام آپ خوش ہے
1: خیر ہے الحمدللہ کیر صاحب گلائے پے مجھے سائیں خوش آمدید چاہوں تھا پنجو نالو وری بدایو تھوڑا ڈاڈیاں گلائیو آواز گھٹ پیو چے بھا جو
2: سائیں محمد یاسین مستوی تعلق بھرا سٹی سائیں
1: بھلی کار چاہوں تھا محمد یاسین مستوی صاحب کے چھا پچھندا بھا ڈاکٹر صاحب کھا
2: سر ڈاکٹر صاحب یہ پچھو محمد صاحب ہوں تو
1: ॾेखारे वञो त वधीक बहितर थींदो जो सुभाणे छंछर जो ॾींहुं आहे छंछर आचार चेक अप फेस डॉक्टर साहिब जी फ्री आहे सुबुह जो ई हलिया अचो वधीक बहितर वधीक एफएम ॿुधो डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाईंदो जी डॉक्टर साहिब
0: अॼु साईं बिल्कुलु अदे खे इहो ई ॿुधाईंदासीं त खोड़सारी मसाला हूंदा आहिनि शुगर जे करे या प्रोस्टेट जे करे या ॿियनि मसालनि जे करे इहो मसालो थींदो आहे त बहितर इहो आहे त रूबरू ॾेखारे ऐं दवा वठी वञे
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर एफएम 94 जो आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु जेको लाइव कॉल ज़रिए असांखे टिप्स ॿुधाए रहियो आहे 0301 9198 51 ऐं कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे अस्सलाम अलैकुम साईं मुंहिंजा केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो ऐं जरवार साहिब खे ख़ुश आमदीद चऊं था इरशाद साहिबु छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां भाउ अच्छा बवासीर वारो तव्हांजे इलाइक़े में अचे पियो एॾो सारो पूरे सिंध जो मशहूरु डॉक्टर आहे इस्लामाबाद कराची खां वठी करे इहो तव्हांजे लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे सुभाणे ई हलिया अचो डॉक्टर साहिब खे ॾेखारियो वधीक जेको पुछणो हुजे पुछो भले डॉक्टर साहिब खां तव्हांखे एफ एम ते बि ॿुधाईंदो लाइव डॉक्टर साहिब हलिया जो ऑपरेशन कराइण जी ज़रूरत ई न आहे इनशाला अलाह सांजी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे कंहिं बि दोस्त खे पिते जी पथरी हुजे गुर्दे जी पथरी हुजे मसाने में जेका पथरी हूंदी आहे बवासीर पाइल्स वग़ैरह हुजनि उन्हनि खे ऑपरेशन जी ज़रूरत ई न आहे डॉक्टर साहिब वटि इलाज मौजूदु आहे अलहमदिल्ला ख़ुशि हुजो भाउ आबाद हुजो डॉक्टर साहिब काफ़ी ॾिसो माना जेके दोस्त ॿुधनि था त उन्हनि खे जंहिंखे बि आहे त जेके हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त उहो पेशंट उन मां हिकिड़ो फ़ाइदो वठे पियो हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल जी तरफ़ ईंदासीं अस्सलाम वालेकुम साईं मुंहिंजा केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो हा बुर्दी साहिबु छा पुछंदा भाउ डॉक्टर साहिब खां अच्छा नंढो आहे 10-12 सालनि जो ॻोठु घणो परे थी मेरापुर खां खरड़ी एॾो परे आहे कोन बिल्कुलु खरड़ी डॉक्टर साहिब खे डॉक्टर साहिबु जुमो छंछर ऐं आचर टे ॾींहं बग़ैर फीस जे चेकअप फीस डॉक्टर साहिब जी हूंदी न आहे आवाम जे लाइ हिते फ्री रखी आहे डॉक्टर साहिबु बाक़ी हफ़्ते जा सभु ॾींहं मौजूदु आहे अंगारे ते सिर्फ़ु डॉक्टर साहिबु न आहे ईंदो हिते मेरापुर में त तव्हां डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारियो, वधीक एफ़ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाईंदो त छा मसलो आहे, पर रूबरू ॾेखारियो वञे त वधीक बहितर आहे मुंहिंजा भाउ। जी सर।
0: जी साईं, बिल्कुलु बादी शइ खटी शइ जेको आहे सो खाराइण मनो आहे अहिड़ी कंडीशन में, ऐं बहितर इहो ई आहे त रूबरू ॾेखारे ऐं दवा वठी वञे।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, जीअं मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ अवां जे समातुनि ते पहुचे पियो। सिंध जो मशहूरु मरूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, जेको हर अरबा ख़मीस जुमे छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मतिलबु जेके दवाऊं डॉक्टर साहिबु जर्मन जूं इस्तेमालु करे थो, त यकीन जेके ॿाहिरि मुल्क खां दवाऊं अचनि थियूं उन जो हिकिड़ो रिज़ल्ट आहे, जेको माना ऑपरेशन खां बचाइनि थियूं। ऐं माशाल्लाह डॉक्टर साहिबु हिकिड़ो 30 साल जंहिंजो तजुर्बो आहे, हिकु इंसान जी ज़िंदगी ऐं डॉक्टर साहिब जो तजुर्बो 30 साल माना अधु ज़िंदगी आहे। डॉक्टर साहिबु 30 सालनि जो तजुर्बो रखे थो, अलाह साईं ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे। कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे 0301-2196-851। ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: साईं, मुंहिंजा केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो? मादे जो मसलो हूंदो न? उमिरि घणी
2: आहे?
1: माना नौजवान आहियो, पोइ बि तव्हां सां मादे जो मसलो आहे। मिर्च विर्च घणा इस्तेमालु कंदो? अच्छा, कॾहिं कॾहिं थो थिए? ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी सर, डॉक्टर साहिबु
0: जंहिं मादे जे लाइ अक्सर मां ॿुधाईंदो आहियां त जीरो ऐं सौंफ़ चमची चमची राति जो पाणी में पिसाए रखिजे, सुबुह जो काढ़े ऐं छाणे उहो पाणी पीजे। इनशाला ताला उन सां जेके बि मादे जा मसाला हूंदा आहिनि या जलन वग़ैरह या पेट ते भरती गैस फूक उहा ख़तमु थी वेंदी आहे। लेकिन इन जे लाइ चांहि जो इस्तेमालु तमामु घटि रखिजे, चांवर खटियूं शयूं ऐं इहे शयूं बंदि करणु खपनि।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, जीअं मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ असांजे समातुनि ते पहुचे पियो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाब शाह, सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेके अव्हांखे सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। काल जी तरफ़ वञूं पिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआऊं अलहमदुल्ला। केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो मुंहिंजा साईं? सेठार जा जे भाउ खे ख़ुशि आमदीद चऊं था। डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी सर, डॉक्टर साहिब।
0: जी बिल्कुलु, उन जी बहितरीन दवा बहितरीन इलाज होम्योपैथिक में मौजूदु आहे। फ़िलहालु अधे इहो चवंदासीं, चांवर, ॻाढ़ो मिर्च, तरपच, थधो पाणी, खटी शइ बिल्कुलु बंदि करे ॾियनि ऐं पाणी गरम करे उनमें हेड विझी या जाण विझी उनजा घराड़ा कनि। इनशा ताला काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, जी मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ असांजे समातुनि में पहुचे पियो। सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेके सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था। डॉक्टर साहिबु होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, गुर्दे पिते मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कनि था, या बवासीर वग़ैरह जिन जे पायल्स आहिनि उन जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु, नक कन गलो पुराणो नज़लो निचो, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वण, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज यानी अधरंगो, खंघि, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, त्री जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी, सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र आहे अलहमदुल्ला। केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो मुंहिंजा साईं? जी जी, छा पुछंदा भाउ डॉक्टर साहिब खां?
2: साईं
1: 3-4 महीना पोइ मेहरापुर न अची सघियो आहे, डॉक्टर मंज़ूर साहिबु अचे थो उन वटि। न इन जो तोखे मुकमिल प्रॉपर तरीक़े सां इलाजु कराइणो पवंदो, तॾहिं जान छुटंदी। हे सूरु ख़राबु हूंदो आहे, हिन वक़्तु महसूसु घटि थींदो, पोइ अॻिते हली जॾहिं थोरी उमिरि इंसान जी पोइ हिते वञे थी त वधीक इंसान खे नुक़सानु पहुचाईंदो आहे, पोइ इंसान ॿुढाइप में थोरो परेशान थींदो आहे वधीक। एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु, तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी सर, डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितरु आहे।
0: हिकु ग़लती माण्हू इहा कंदा आहिनि जो कुझु देरि सां ॾेखारींदा आहिनि ऐं ॿी ग़लती इहा कंदा आहिनि त वञी मालिशूं कराईंदा आहिनि ऐं मालिश कराइण बि तमामु नुक़सानकार हूंदी आहे। मां हॾे ते ऐं रगुनि ते मालिश तमामु झलींदो आहियां त मालिश हरगिज़ न करणु घुरिजे। अलबत्त को बि जेकॾहिं तेल आहे सरहं जो गरम करे हेड विझी उहो ज़रूरु लॻारायो, लेकिन इन खे मालिश न करायो। ऐं वधीक दवा इन जे लाइ तमामु ज़रूरी, को बि टोटको उन में फ़िलहालु आर्ज़ी तौर ते जेकॾहिं फ़र्क़ु ॾिए बि थो, पर बहितर इहो ई आहे त ट्रीटमेंट हुन जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे। ऐं यादि रखो, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते असां मुयारी दवाउनि सां पेशेंट जी केयर कराईंदा आहियूं, पेशेंट खे ट्रीट कंदा आहियूं। ईअं त खोड़ सारो शहर छा सॼो मुल्क भरियो पियो आहे, त असां वटि ई पेशेंट जी रश छो हूंदी आहे, इन जो हिकिड़ो ई सबबु आहे, सिर्फ़ु मुयारी दवाऊं जेके असां ॾींदा आहियूं ऐं पेशेंट खे अलहमदिल्ला छो जो शिफ़ा ॾियण जी ज़ात रब ताला जी आहे। बाक़ी जेकी डाइग्नोज़ हिकु हूंदी आहे, डाइग्नोज़ मर्ज़ जी सुञाणप उहा कई वेंदी आहे, ऐं उनखां पोइ उनखे दवा जेको आहे सो मयार ॾिनी वेंदी आहे, उन जे करे ई जेको आहे सो पेशेंट खे अलहमदिल्ला अल्ला ताला शिफ़ा ॾींदो आहे। वॾी
1: अलाह सां हुकुम सां अलाह सां शिफ़ा ॾिए थो। पहिरियां चवंदो आहे त डॉक्टर सुठे नमूने सां मरीज़ जो चेकअप करे, जीअं तव्हांजो उनखे डायग्नोज़ करे, मर्ज़ जी सुञाणप करे। दोस्तो, हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गॾु गॾु रहिजो, तव्हांजो असांजो साथ रहंदो हिन प्रोग्राम में पूरे 8 वॻे ताईं। ऐं पहिरियां हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।
3: पाकिस्तान की ज़्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013808347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008 5569
2: आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601 00
4: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
5: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

8104105109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील महा से फौरन

उम्मीद है कि सभी दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और जो है कि हमारा शो एंजॉय कर रहे होंगे। मिल्क राइस ब्यूटी शो न फकत एंजॉय आपने म्यूजिक को करना है बल्कि हमारी प्रोडक्ट्स को लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। और जिन दोस्तों ने अब तक इस्तेमाल की है वो अपने फीडबैक से हमें आगाह करेंगे। हमें फीडबैक से आगाह करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 03003105109। और उसी नंबर यानी कि 03003105109 पे कॉल करके आपने मलिक जफर इकबाल और एम सिद्दीक साहब से बातचीत करनी है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए भी। अगर आप अपने करीबी किसी शहर किसी जनरल स्टोर में अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवाना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं।

जिन दोस्तों को जो है कि न फकत गिफ्ट चाहिए बल्कि पार्टिसिपेट करना है हमारे प्रोग्राम में, तो वो हमारे लाइव कॉलिंग नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी कॉल अटेंड अब से करेंगे, 0300-931-9667 पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। बात फकत म्यूजिक पे नहीं होगी, बात फकत ब्यूटी पे नहीं होगी, बात जो है कि अमन पे होगी, मोहब्बत पे होगी, प्यार पे होगी। आज का सवाल टॉपिक है हमारा, सवाल बाद में आपको रिडल देंगे जो जिस पे आपको जो है कि कुरानदाजी में शामिल करके जो है कि गिफ्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन आज का सवाल है, टॉपिक है जिस पे आप थोड़ी देर हमसे बात कर सकते हैं, अपने खूबसूरत इजहार ख्याल कर सकते हैं। वो ये कि हमारी एज अ सिटीज़न हमारी मुआशरे में कंट्रीब्यूशन क्या है, या अपने शहर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और क्या हम अपनी जो है कि वो जिम्मेदारियाँ बुरे वक़ार ला रहे हैं, छा सा हुए पहुँचू जिम्मेदारियों का तो बाणियों था पाया, या असा तो कें भी किस्म की का भी जिम्मेदारी ना है, फकत शिकवा जो तो वे सरकार का रहा असा जा। सवाल सवलो है, तमाम टॉपिक सवलो है, इन टॉपिक से गाल बोल करण लाए जो था अवां के असां के कॉल करनी पौंदी, असां जो लाइव कॉलिंग नंबर है 0300-931-9667।

जी दोस्तों, प्रोग्राम का पहला म्यूजिक ट्रैक खूबसूरत सी धमाल मैडम आपदा परवीन की आवाज़ में मिलकर एंजॉय करेंगे, और उसके बाद जो है कि हम आपको रिडल भी देंगे जिसमें आप जो है कि अपनी किस्मत आजमाई करेंगे, और मलिक जफर इकबाल से हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट जो है कि मिल्क राइस की ब्यूटी प्रोडक्ट की आप जो है कि गिफ्ट भी जीत सकते हैं। तो इस वक्त करेंगे हम म्यूजिक को एंजॉय। तो चलिए हमारे साथ जो है कि मैडम आपदा परवीन, शायण आपदा परवीन जी आवाज़ में खूबसूरत धमाल हम सब नीचे ना हो।

जी वेलकम बैक, मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूँ आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GAFM 94 बैरापुर। मिल्क राइस की प्रोडक्ट जो हैं उनमें मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्ने क्रीम और मिल्क राइस विटामिन सी, इसका जो इस्तेमाल करने का तरीकेकार है, जो हमारा यूज़र है ऑलरेडी जो वो कॉल करेगा हमें, तो वो तो बताएगा कि फीडबैक कि आपको रिजल्ट कैसे मिल रहा है, आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि रात को सोने से पहले पहले आपने जो है कि फेस वॉश अपना करना है साबुन के साथ, मिल्क राइस ब्यूटी सोप के साथ आपने अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद आपने अप्लाई करनी है मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम। सेम एज वही चीज़ आपने रिपीट करनी है, एक्ने क्रीम यूज़ करने से पहले आपने मिल्क राइस ब्यूटी सोप इस्तेमाल करना है, चेहरा अच्छे तरीके से साफ करके धो के रात को सोने से पहले फिर मिल्क राइस एक्ने क्रीम आपने इस्तेमाल करनी है। एज इट इज़ सुबह उठते ही आपने फिर जो है कि रिफ्रेश होने के लिए मिल्क राइस ब्यूटी सोप के साथ अपना चेहरा बिल्कुल क्लीन कर देना है, धो देना है। और प्रोडक्ट के हवाले से तो आप लोगों को पता ही है कि मेहराबपुर के तमाम बड़े अच्छे अच्छे जनरल स्टोर्स पे हमारी जो है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है। सबसे पहले खुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर, बहुत अच्छा और प्यारा जनरल स्टोर जहाँ पे जो है कि हमारी तमाम मिल्क राइस की प्रोडक्ट आपको अवेलेबल मिलेंगी। उसके बाद फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर, जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर, अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर।

इसके अलावा आप हमसे जो है लाइव कॉल पे बात कर सकते हैं, अपना फीडबैक प्रोडक्ट के हवाले से बता सकते हैं और छोटी मोटी अपनी जो है कि प्रोग्राम के हवाले से बातचीत भी कर सकते हैं, फरमाइश भी हम आपकी सुनेंगे, बात करेंगे, प्रोडक्ट पे भी बात करेंगे और आज के टॉपिक पे भी बात करेंगे। आज का टॉपिक है कि हमारी मुआशरे में एज ए सिटीजन क्या कंट्रीब्यूशन है, असां जो किरदार चाहे मुआशरे के अंदर बीइंग एज सिटीजन शहरी होने के नाते से असां जे मुल्क में जे सूबे में जिते इलाके में मोहल्ले में जिते रहूं पे असां जो किरदार

भरोसा जो दिल जीत ले हम दावा नहीं

वॉश धोई करे जो बाद मिल्क राइस ब्यूटी सोप सां धोई करे पो एक्ने क्रीम अप्लाई कंदो ऐं सुबुह सां साॻी रिपीट अवां कंदो साॻे तरीक़े खे रिपीट कंदो सुबुह सां अवां जो हिकु मिल्क राइस ब्यूटी सोप सां मुंहुं धोईंदो ऐं हुन खां बाद अवां जेको आहे त पोइ ॿी काई बि अवां जेकॾहिं नॉर्मली जेको बि कंदा हो सादे रहणु पसंदि कंदा हो या पंहिंजे थोरो घणो कुझु बि को मेकअप किट शिट जीअं हूंदी आहे उहो कयो था त उहा रूटीन में आहे ओके ऐं स्पेशली इहो फीमेल्स लाइ मेकअप किट जी ॻाल्हि आहे मर्द त तमामु सादा मिज़ाज ऐं सादा स्टाइल हूंदा आहिनि

जी दोस्तों असा नेक्स्ट ट्रैक ते वनन खाग में वंस अगेन अवां के बुधाईंदा हलूं ता असा जी लाइव कॉलिंग नंबर है 03003319667 इन ते अवां कॉल करे अजो के टॉपिक ते भी गाल बोल करे सगो था उन खा अलावा जो ता पेंजो फीडबैक दिंदो प्रोडक्ट जे हवाले सा प्रोडक्ट असा जी मिल्क राइस जी प्रोडक्ट आहे मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सॉप मिल्क राइस एक्ने क्रीम मिल्क राइस विटामिन सी जेका अवां के मेरा पुरजहर तमाम सुठे नंढे वडे जनरल स्टोर ते अवेलेबल आहे जिन जनरल स्टोर ते असां जी प्रोडक्ट अवेलेबल आहे उन्हनि मंझां खुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर कामरान जनरल स्टोर मेहराबपुर हफीज जनरल स्टोर मेहराबपुर कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर ऐं अल करीम जनरल स्टोर मेहराबपुर।

जी सॉन्ग से पहले हमने जो है आपसे एक टॉपिक पे बात की थी और उस टॉपिक पे बात करने के लिए हम कॉल अटेंड कर रहे हैं। आपकी हमारे लाइव नंबर है 03009619677।

0: अच्छा जी आप जो है इमिग्रेशन शो में
1: कॉल के साथ करने के लिए
2: ट्रिपल 1 10 है आपका मैसेज जो है अनाउंस करेंगे हम।

0: दोस्तों, आज की जो है कि रिडल नहीं, बहुत आसान सी रिडल ही है, पहली है, लेकिन
1: और ये है
0: जो ड्रीम है
1: उसकी टपी का कलर क्या है।
0: बहुत आसान सवाल है,
1: उसका बहुत आसान सा जवाब है, जो हमारे यूजर्स से वो ऑलरेडी जानते हैं, और जो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी
0: माद
1: रखते हैं या रखना चाहते हैं, तो वो इस छोटे से सवाल का जवाब देके जो है कुरानदाजी हम आपको बार और एक्मी क्रीम जो है गिफ्ट करेंगे।

0: ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਕਿਥਾ ਗਾ
1: बिल्कुल वठंदो ऐं अॼोकी टॉपिक ते अव्हां का ॻाल्हि ॿोल करणु चाहींदो त असांजी मुआशिरे में पंहिंजे मोहल्ले में ओड़े पाड़े में असांजो किरदारु छा आहे एज़ अ सिटीज़न जी अदा कॉल ड्रॉप थी वई शायदि इहा असांजो सवाल कोई सम्झी कोन सघियो सवाल असांजो ॾुखियो लॻो

जी दोस्तों, मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स जो अवां जे शहर में मैरापुर में हर नंढे वड़े जनरल स्टोर ते अवेलेबल आइन, उन्हनि मजा खुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर, अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर।

असां अवां जूं अवां जी ज़ुबानी अवां जे वाता ॿुधण था चाहियूं त असांजूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बींग अ सिटीज़न बींग अ शहरी या ओड़े पाड़े में असांजूं छा आहिनि किरदार मुआशिरे में। अॼुकल्ह ईअं थी वियो आहे त नफ़्सा नफ़्सी जो एतिरो दौर वधी वियो आहे, एतिरी ॻाल्हि वधी वियो आहे, लेकिन इहो अॼुकल्ह कंदे कंदे अॼुकल्ह चवंदे चवंदे बि वरी ज़माने खां इहे ई सिलसिला हलनि पिया। हर माण्हूअ खे पंहिंजो किरदारु अदा करणो आहे, हिकिड़ो मस्बत हिकिड़ो पॉज़िटिव कैरेक्टर किरदारु अदा करणो आहे। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, शेक्सपियर जेको आहे त अंग्रेज़नि जो हिकिड़ो सुठो फिलासफर हुयो, जीअं पाण वटि वॾा वॾा नाम रहिया आहिनि, मुर्शिद भिटाईअ जी ॻाल्हि कजे या सचर जी ॻाल्हि कजे, त उन्हनि बि फ़लसफ़ो बयानु कयो आहे, उन्हनि प्यार मुहबत जो पैगाम ॾिनो आहे। शेक्सपियर चयो त हीअ दुनिया हिकु स्टेज आहे ऐं हर इंसान हिते उहो को किरदारु प्ले करे रहियो आहे, उहो हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो कैरेक्टर आहे, असां पंहिंजो पंहिंजो किरदारु। मुंहिंजो अॼोको सुवाल बि इहो आहे त छा असांजो किरदारु छा आहे मुआशिरे में, असांजी कंट्रीब्यूशन केतिरी आहे, असां पंहिंजे मुआशिरे लाइ केतिरा असां भला आहियूं, केतिरा बहितर आहियूं, कोई असांखां ॾुखायल त नाहे, रंजीदा त नाहे, कंहिंखे का तकलीफ़ त नाहे, या असां ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छा आहिनि, या रुगो असां सरकार ते शिकवा करे वेही रहूं

0: जी दोस्तों, आवाम उधर आया हूँ GFM 94 मैरापुर आऊँ आया आबिद चौहान प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो एंजॉय कर रहे हो। खूबसूरती जो नजर आए, भरोसा जो दिल जीत ले। आवाम सबनी महबूबन जे नाव फौजिया सुमरो जो ये खूबसूरत गीत।
1: फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइस।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस पीटी शो सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान ऐं अव्हां ॿुधी रहिया आहियो GFM 94 जी दोस्तों मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सोप मिल्क राइस एक्नी क्रीम मिल्क राइस वाइटमिन सी असां जूं प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर कामरान मोगल जनरल स्टोर मैरापुर हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर कोरी जनरल स्टोर मैरापुर जावेद जनरल स्टोर मैरापुर अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर असां सां गॾु लाइन ते हिकिड़ो कॉलर मौजूदु आहे असां कॉल शामिल कंदासीं वालेकुम सलाम केरु प्यारा किथां खां लख थोरा मूं हिकिड़ो सवाल कयो अॼु तमामु जेको आहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन त मूं चयो त बींग अ सिटीज़न हिकु शहरी हुअण जे नाते सां असांजो मुआशिरे में किरदारु छा हुअणु घुरिजे ऐं छा आहे असांजो
1: हा बिल्कुलु सर पहिरियां त पंहिंजे पाण खे सुधारणो पवंदो
0: सही
1: हा उन खां बाद में पंहिंजे घर खे सुधारणो पवंदो पंहिंजे घर खां पोइ पंहिंजे माहौल खे मां सुधारणु पंहिंजे ॻोठ खे सुधारणो पवंदो ऐं उहो तॾहिं सुधारण जॾहिं असां पाण हिकु सुठे किरदार जी कोशिशि कंदासीं रखण जी ऐं तालीम हासिलु कंदासीं ऐं तालीम हासिलु करण खां पोइ पंहिंजे ॻोठ खे सवारींदासीं उन खां बाद में पंहिंजे शहर खे उन खां बाद असां पूरे माशरे खे सिंगारींदासीं पंहिंजे माशरे खे सुधारण खां बाद पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त कंदासीं
0: बिल्कुलु ज़बरदस्त तव्हां सही ॻाल्हि कई त असांखे सभ खां पहिरियों पाण खां स्टार्ट करणो पवंदो असां वरी ॿियनि ते छॾे ॾींदासीं जी जी
1: असां में जॾहिं पाण में अहलियत हूंदी ऐं पंहिंजे घर खे अहलियत ॾींदासीं त असां अॻिते वधी सघंदासीं ऐं असां माशरे खे सुधारण जी कोशिशि कंदा ऐं सुधारे बि वेंदासीं इनशाह
0: वरी महिरबानी थैंक यू असां ॿियो असांजो जेको आहे अॼोको बिल्कुलु बि आसान जेको आहे हिकिड़ी गुज़ारत आहे गुज़ारत छा आहे जदीद दौर जी नई ॻाल्हि आहे त असां पंहिंजे प्रोडक्ट जे हवाले सां फीडबैक वठूं पिया हिन महिल ताईं अवां परचेस कई आहे अलाए कोन मूंखे ख़बर न आहे
1: बाक़ी ऐं मां वाइदो कयो आहे इनशाला सां वठी करे पोइ इहे तव्हांखे कलर्स बि ॾिसींदासीं ऐं हिन बारे में मालूमात बि ॾींदासीं ऐं इनशाला इनाम बि खटींदासीं
0: इनाम पोइ बाद में खटींदो मतिलबु जॾहिं अवां प्रोडक्ट परचेस कंदव ऐं तव्हां अॼु जवाबु कोन था ॾेई सघो
1: ऐं न छो जो सर असां ॾिसो न माना असां धोखो बि न हणो असांखे साफ़ ॻाल्हि रखणी आहे ऐं उहो ई ॻाल्हाइणो आहे जेको असां सच ॻाल्हाइणो आहे त असां अञा वरितो न आहे त इनशाला वठंदासीं ज़रूरु जीअं असां मेरापुर वियासीं
0: बिल्कुलु सर

0: बसि असां ईअं चवंदासीं त मां पंहिंजी दिलि जी इहा ॻाल्हि कयां त अवां माशाल्लाह ॾाढा सुठा आहियो, अवां प्रोग्राम सुठो कयो,
1: ऐं
0: अवां असांखे शायदि सर क़ैद करे छॾियो आहे, ऐं मुंहिंजी सरे नथी, मां चवां साईं जो मां ही टई घंटा प्रोग्राम ॿुधां,
1: लख थोरा लख थोरा मोहबतूं कुर्ब साईं,
0: हा अलाह खे तव्हांखे आबाद कंदो, मुंहिंजे नवाबी संगत जा कोई दोस्त
1: जी नाला शामिल कयो, नाला शामिल कयो,
0: हा बिल्कुल सर, मुंहिंजे नवाबी संगत मां मुनीर अहमद सियाल तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधे थो, ऐं असलम चना साहब प्रोग्राम ॿुधे थो,
1: वॾी महिरबानी दोस्तनि जी,
0: संगत वारा ॿिया प्रोग्राम ॿुधा, सभिनी खे सलाम, अवां खे ऐं पूरी टीम खे सलाम,
1: लख थोरा साईं वॾी महिरबानी, वालेकुम सलाम, थैंक यू,
0: अहसान अहसान, थैंक यू सर,
1: थैंक यू, नवाबी संगत का हुसैन बख्श सयाल साहब असा सा गड लाइन ते मौजूद हुआ, तमाम प्यारो पैगाम उन्होंने दिनों मुआशरे में जो असाजी कंट्रीब्यूशन असाजी सब का पे असाजी अवलीन जिम्मेदारी है तो जो भी कम कजे तो वो पान का शुरुआत कजे जेका उम्मीद असड़े सुठे अमल की बे का रखूँ था तो वह पे पान करण घुर्जे तो मां कर रो आ मिसाल की गाल तमाम नंबी गाल ट्रैफिक में एडी रश भी न होंगी है जिन नंढन शहर का अवं जै शहर का आयो तो जैसे घुतणी को जैसे अस वन जी क्रॉस करण की कोशिश क्यों था बे सा टकरायूं था तो बजाय जे सॉरी करण के एक्सक्यूज चवण के एक बे उत ही जो अस उभा थी वूं था ऑन द स्पॉट उत अस फैसलो करण की कोशिश क्यों था सब का पे तो नंढन गाल इग्नोर कर मुआशरे में एक सुठे शहरी के हैसियत से असा जिंदगी गुजारण घुर्जे अमन मोहब्बत प्यार की फिजा कायम थी लगभग प्रोग्राम जो जो टाइम है वो पैंजी पुजाणी न वही रो है अस एक भेरों बीहर अवं के मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बुधाईदे तो उ अवेलेबल आन अवें शहर यानि कि मेहराबपुर में मेहराबपुर के तमाम सुठन जनरल स्टोर से असि प्रोडक्ट अवेलेबल है खुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहराबपुर हफीज जनरल स्टोर मेहराबपुर कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर इन के अलावा जैसे अवं कें बे जनरल स्टोर से असाजी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कराने चाहो था प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराने चाहो था तो उन अवं असाजे हेल्पलाइन नंबर से कॉल करनी पवी असो हेल्पलाइन नंबर है 03003105109 इन कॉल कर अवं गाल बोल कर मलिक जफर इकबाल साहब एम सिद्दीक साहब से ऐं इन सां गॾु अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाइण ते पहुतो मूं नाचीज़ यानी कि आबिद चौहान खे इजाज़त ॾींदा सन सलामत साध सलामत ऐं अवां इंजॉय कंदा हीअ ख़ूबसूरत म्यूज़िक ट्रैक जलाल चांडियो जी आवाज़ में माफ़ी ॾे मिठा महकू माफ़ी ॾे मिठा
2: ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइस

हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मामलियाती कौमी असेंबली ऐं सेनेट में बहस कराइण जो ऐलान पार्लियामानी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त सूबनि वारे मामले ते बहस जो असल हंधु पार्लियामेंट आहे. अक्टूबर में कौमी असेंबली ऐं सेनेट जे इजलासनि दौरान नवनि सूबनि वारे मामले ते बहस करायो वेंदो. इस्लामाबाद खे थार सूबो ठाहिण ते का ॻाल्हि ॿोल नाहे थी. राजधानी वारे शहर खे सूबो ठाहिण बदिरां हुते हिकु नओं गवर्नेंस मॉडल ठाहिण जूं तयारियूं हली रहियूं आहिनि.

0: जेके भी इन्हनि जा नापाक इरादा आहिनि सिंध खे तक़सीम करण जा, उन जे असां बिल्कुलु ख़िलाफ़ आहियूं।
1: सिंध जा माण्हू सम्झनि था हुन जे वातानियत ते वार आहे।
2: असां सिंधी माण्हू ईंदो, असां सिंध सां गॾु आहियूं, कंहिं बि असां पाण सां गॾु कॾहिं बि न बीहंदासीं।
3: सिंध जो अवाम न अॻे कॾहिं सिंध खे तक़सीम थियणु ॾिनो आहे, न हाणे ॾींदासीं।
4: कुझु बि थींदो सिंध वारा न ॾींदासीं,
5: पर सोचूं था त सिंध जी विरासत न, पर असां सिरनि जी विरासत कंदासीं।
6: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ो करण जी साज़िश
7: आहे। ग्राम असांजे नामंज़ूर आहे।
8: धरतीअ जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं उन जो सबूत आहे जो हाज़ ॾिसंदा सिंध जो पिणा जा इन जा इहो हाज़ जा चथा जो लॻाए सिंध जा मज़दूर, सिंध जा हारी, सिंध जा उस्ताद, सिंध जा शाइर, अदीब, वकील कोन पियो हूंदा।

सिंध जे इम्कानी विरहाङे के खिलाफ सिंध जा वकील मैदान ते अची विया। सिंध बार काउंसिल जे सटे वकीलन एक आवाज थी, मुतहिद सिंध जो वाज़ह पैगाम ॾेई छॾियो। सिंध यूनिटी डे वारे सटे अदालती कार्रवाईन जो बाइकॉट ऐं मुज़ाहिरा। कराची खां कश्मोर ऐं कारुंजर खां केटी बंदर ताईं को भी वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन जे समूरनि नंढियुनि वॾियुनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा। सिंध जे सियासतदाननि, कानूनदाननि, अदीबनि ऐं सहाफ़ियुनि सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे रद्द करे छॾियो। वहदत सिंध कराची यूथ डायलॉग में सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर। मरसूं सिंध ऐं ॾेसूं जा नारा। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार अहमद कोड़े चयो आहे त सिंध असेंबली 6 भेरा ठहराउ मंज़ूर कया त कराची खे सिंध खां धार नथो करे सघिजे। सिंध जा माण्हू जानियूं क़ुर्बान करे सघनि था पर धरती माउ जो विरहाङो बर्दाश्त न कंदा। सूबाई वज़ीर सईद ग़नी जो चवणु आहे त आसमा शिराज़ी ऐं प्रोफेसर डॉक्टर सईद जाफ़र चयो त मुल्क पहिरियां ई घणो विरायल आहे, वधीक तक़सीम जूं ॻाल्हियूं मुनासिब न आहिनि, सभु तजुर्बा थी चुका आहिनि, मुल्क वधीक कंहिं तजुर्बे जी सट नथो सही सघे।

पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जो दिफ़ाई सहकार जारी आहे। दिफ़ाई मुआहिदे ते अमल दरामद लाइ वक़्तु घुरबल आहे। परडे॒ही तर्जुमान सजाद हैदर ख़ान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तारी ऐं सलामती लाइ हिमायत जारी रखंदो। पाक फोर्स सऊदी अरब में तरबियत ऐं लॉजिस्टिक सहूलियत लाइ मौजूद आहे। पाकिस्तान सऊदी ते हौसी हमलनि जी मज़म्मत करे चुको आहे। अफ़गान शागिर्दनि ते बि पाबंदियूं दुरुस्त नाहिनि।

उर्दन में अमरीकी अडे ते ईरानी हमलन के नतीजे में अमरीका के केतरनि ही फौजी जहाजन के नुकसान पहुंतो है। अमरीकी मीडिया तस्दीक कर छी। सीबीसी न्यूज पैंती रिपोर्ट में जनायो है त ईरानी मिजाइल हमलन में अमरीका जा F-15 जहाज A-10 थंडर बोल्ट मुतासर थिया हैं, जडे त कें भी अमरीकी फौजी के नुकसान न पहुंतो। ईरान ऐं अमरीका विच में वधंदड़ चिकताण सबब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ आटो पॉलिसी 2026 जी मंजूरी ॾेई छॾी। ऐलान IMF जी मंजूरी बाद कयो वेंदो। आटो पार्ट्स जी बरामदाद वधाइण लाइ आलमी वैल्यू चेन सां ॻंढण ऐं 5 वॾा एंकर मैन्युफैक्चरिंग इदारा ठाहिण जी तजवीज़। बरामदी आटो पार्ट्स ते दरामदी ड्यूटी ख़तम करण जी बि सिफ़ारिश थियल। जो घरू वजीर ज़ियाल अंजार तलपी ते बी रज़ा केस की जांच कदड़ अदालती कमिश्नर पेश। ज़ियाल अंजार एडवोकेट जनरल के तबीयत ते गैर मशरूत मुआफ़ी वठी छदी। जस्टिस उमर सियाल अवां के घुराण जो मकसद वारिसन ऐं अवाम जो एतमाद बहाल करण आहे। एडवोकेट जनरल जो रवैयो गैर ज़िम्मेवारानो ऐं तस्दीक आमेज़ हो। घरू वजीर ज़ियाल अंजार सिंध हुकूमत केस जी शफ़ाफ़ जांच चाहे थी। कमीशन जो नतीजनि ताईं पहुचण ज़रूरी आहे। ज़िम्मेवारनि खे मंतकी अंजाम ते पहुचायो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वदन मर्दन ऐं औरतन में वजन जो न वदन उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
0: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 0242-460100।

प्रोग्राम दिल जी गाल सा गदाऊ है आब चौहान आवा बुदी रहया GAFM नेटवर्क GAFM नेटवर्क ए दिल जी गाल जे बुधंदड़ तमाम सबनी प्री प्यारन दिल रुबा दिल भर दोस्तन के वेलकम भलीकार खुशामदीद।

कह कारुसेल हो जे कह जो साथी अगर रुसी वयलन के ही परचाई दिया शायरी सच गलाई दिया कोई केडो भी कहखा को दूर रहे कोई केडो भी कहखा को दूर रहे पंजन प्यारन सा प्यारा मिलाई दिया शायरी सच गलाई दिया थोरो आहे मजो थोरो आ दर्द भी थोरो आहे मजो थोरो आ दर्द भी सूर सुमहल वरी से जगाई दिया शायरी सच गलाई दिया बार दिलता गमन जो ही लाही दिया

हिक हुजे दर्द तौन दर्द जो दरमान कजे हिक हुजे दर्द तौन दर्द जो दरमान कजे याद माजी के भला छा दिले नादान कजे हिक हुजे दर्द तौन दर्द जो दरमान कजे याद माजी के भला छा दिले नादान कजे गम सहे आहूं भरे मूसा मोहब्बत भी करे

गम सहे आहूं भरे मूसा मोहब्बत भी करे किए चाहीं दो कोई पहजो ई नुकसान कजे याद माजी के भला छा दिले नादान कजे। पाण वट रख तू सभई सूर संभारे ऐ दिल।

पाण वट रख तू सभई सूर संभारे ए दिल केर बुधंदो ही किसा कें के परेशान कजे याद माजी के भला छा दिले नादान कजे। अजनबी वांगे मटे रूप मुसाफिर बणजी अजनबी वांगे मटे रूप मुसाफिर बणजी दिल थी चए पान के हुन जो वरी मेहमान कजे याद माजी के भला छा दिले ना।

तो चाहे त छॾे शहर ही मंज़ूर वञे।

हू तो चाहे त छॾे शहर ई मंज़ूर वञे छो न दुनिया ई छॾे हुन खे बि हैरान कजे यादि माज़ी खे भला छा दिले नादान कजे हू तो चाहे त छॾे शहर ई मंज़ूर वञे छो न दुनिया ई छॾे हुन खे बि हैरान कजे यादि माज़ी खे भला छा दिले नादान कजे हिकु हुजे दर्द त उन दर्द जो दरमान कजे।

0: पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण, उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो, राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 0300-310-5109, 0300-310-5109।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: नूरे जा पीउ रेडीअ ते चारे मसाले जो ॿुधाइनि पिया, भला इहो त ॿुध ऐं वठी अच।
4: जीजा ढोर चारो मसालो आज़मेदार, वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार। 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
5: हा भाग भरी चङो थो लॻे, मां हाणे ई थो वठी अचां।
6: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।

0: दिलजी गाल सां गॾु आउं आहियां आबिद चौहान ऐं अव्हां ॿुधी रहिया आहियो जीए एफएम नेटवर्क जी। दोस्तो प्रोग्राम में सभिनी महबूब दिलरुबा दिलबर दोस्तनि खे वेलकम भलीकार ख़ुश आमदीद चऊं था। हींअर वक़्तु आहे अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल करण जो, अव्हां जूं दिलि जूं ॻाल्हियूं ॿुधण जो, अव्हां सां दिलि जूं ॻाल्हियूं करण जो। त पोइ बिना कंहिं देर जे असीं अॼु जी पहिरीं कॉल शामिल कंदासीं। अस्सलामु अलैकुम, केर साईं किथां खां? अस्सलामु अलैकुम, केर प्यारा किथां खां?
1: वालेकुम सलाम सर, असां आबिद हुसैन सर।
0: जी आबिद हुसैन, आबिद चौहान।
1: आबिद चौहान सर, साईं तव्हां जी महिरबानी, तव्हां असांजी कॉल कई।
0: न न, वॾी महिरबानी अव्हां जो, अव्हां प्रोग्राम में शामिल थियो। ॾाढी ख़ुशी थी अव्हां जी कॉल रिसीव करे। छा चवण चाहींदो प्रोग्राम जे हवाले सां? बिल्कुल, जीअं असांखे शिकायत मिली त कॉल अटेंड कंदा कयो, असां सां गॾु बि कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल अटेंड कंदा प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? कॉल कई आहे, असां सां दिलि जी ॻाल्हि कयो, का दिलि जी ॻाल्हि कयो, को शेर, को
1: पोएट्री।
0: सर इहो हाणे तव्हांजो मोहबतूं आहिनि ऐं कॉलिंग असां मतिलबु टकराइजनि थियूं हिक ॿिए सां, अव्हां जूं जेके इहे मोहबतूं मिठियूं पहिरियूं ॻाल्हियूं, सो कॉल जे मथां कॉल आहे, सो पोइ वाकई कुझु नंबर बिज़ी मिलंदा। हाणे जीअं अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे त ॿियो को दोस्त वेटिंग में हूंदो?
1: हा बिल्कुलु हूंदो साईं, बसि हाणे त असां तव्हांखे वध में वधि मुबारकूं ॾींदासीं, जो असांजे टाइम जो छा ऐं इज़त जो छा ऐं इज़त ई लाइक़ु
0: अव्हां लाइक़ु आहियो साईं। इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे, छा चवण
1: चाहींदा?
0: फरमाइश बि शामिल थींदी, ॿिया जेके दोस्त तव्हांखे ॿुधनि पिया, मतिलबु
1: वॾी
0: महिरबानी, लव यू, लक लाइक, कुर्ब,
1: थैंक यू।

0: जी एज़ पर कमिटमेंट ही कॉर्नर आहे हींअर कॉलिंग जो कॉर्नर आहे असां कॉल अटेंड कंदासीं प्रोग्राम में अस्सलामु अलैकुम केर प्यारा किथां खां
1: वालेकुम साईं आऊं ठीक थो लॻे
0: ॻाल्हायां केर प्यारा तव्हांजी आवाज़ कुझु क्लियर न आई
1: साईं अज़ीज़
0: सोलंकी किथां सुणा
1: मीरपुर
0: खास खां वेलकम वेलकम भलीकार प्यारा प्रोग्राम में
1: आबद चवान केड़ा लॻा
0: सर अलाह जा एहसान दुआऊं मोहबतूं मोहबतूं ॾाढी पंहिंजा महसूस थी अव्हां जे अंदाज़ मां मोहबतूं मान अव्हां जो असां बि ज़रूरु ईअं ई अव्हां वांगुरु असां एज़ अ कॉलिंग बि कईसीं असां प्रोग्राम बि ॿुधासीं ऐं अव्हां जहिड़नि माण्हुनि जो मिज़ाज बि ॿुधोसीं ऐं काफ़ी आरजेस बि ॿुधासीं त डेफिनेटली जेका शइ असांखे वणंदी असां अहिड़ी शइ खणी ईंदासीं कोशिशि इहा कंदासीं हा अंदाज़ मिज़ाज हर माण्हूअ जो पंहिंजो हूंदो आहे बसि इहा तारीफ़ जो लाइक़ु जेको आहे त स्टेशन डायरेक्टर असांजो बाबर भाई आहे जंहिं जेको आहे त असांखे अपॉर्चुनिटी ॾिनी ऐं अव्हां सरणनि सां जेको आहे ॻाल्हि ॿोल करण जो मौक़ो ॾिनो बिल्कुलु साईं बिल्कुलु को दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो
1: साईं
0: वरी महिरबानी वालेकुम सलाम मुंहिंजा बि सलाम सॼी संगत खे थैंक्यू

बिल्कुलु कॉल्स त हलंदियूं रहंदियूं ऐं काफ़ी कॉल्स असां अटेंड कयूं, वरी असां कॉल अटेंड कंदासीं, पर हींअर जेको आहे त दिलि चाहे थी त उस्ताद जलाल जे ख़ूबसूरत म्यूज़िक ट्रैक सां जेको आहे त वरी हिकिड़ो आगाज़ कजे ॿीहर। अचो त गॾिजी जलाल चांडियो जे आवाज़ में ही ख़ूबसूरत ट्रैक इंजॉय कयूं।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम दिल जी गाल सा कराऊ है आबे चौहान आया बुदी रहे आओ जी एफएम नेटवर्क। दोस्तों उस्ताद के बैकग्राउंड में रखी करे असा मुझे दिल चाहे थी ता प्रोग्राम वरी जो आ ब्रेक ना वही रहे आ ब्रेक का वरी अवां जी बेसब्री अवां जी कॉल्स हल दियो रंदियो सो तह करे मुझे दिल चाहे थी तहकत कॉल बी अटेंड कज। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम सर। एहसान केर किथा का सॉरी अली बख्श मल्ला अचू को भी वेलकम भलीकार प्यारा प्रोग्राम में प्रोग्राम किए पे लगे बिल्कुल मजो अचे पे मोहब्बतूं मोहब्बतूं मोहब्बतूं छा चवण चाहिए दुआ अल्लाह एहसान छा चवण चाहिए दो मोहम्मद यूसुफ जो प्लेलिस्ट में शामिल करे छियूं था दोस्तन जा नाव शामिल करण चाहिंदो जी परे परे सलाम मोकिलियो पिया क्या बात है मोहम्मद यूसुफ जो ट्रैक प्लेलिस्ट में शामिल करे छियूं ना हियर असा ब्रेक ते वेंदा से बिल्कुल बिल्कुल शामिल कयो तो वरी मेहरबानी प्यारा कुर्ब थैंक यू
1: मेहरबानी सर मेहरबानी
0: अल्लाह हाफिज़
1: अल्लाह।

वक़्तु थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो. न्यूज़ ब्रेक खां बाद में हिकिड़ो नंढिड़ो कमर्शियल ब्रेक, उन खां पोइ वापसि वरी विहंदासीं. वरी अव्हां सां दिलि जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदा रहो. जी एफ एम नेटवर्क, दिलि जी ॻाल्हि आबिद चवण सां गॾु.

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इस्लामी जो है प्रोग्राम पर आए वो भी वोट डेण बदरा भजी वो सीनियर वकील शहाब सरकी आसमा शिराजी ए प्रोफेसर डॉक्टर सईद जाफर चो तो मुल्क पे ही घो विरायल है तकसीम जो गाल मुनासिब ना सब तजुर्बा चुका मुल्क कें तजुर्बे की सट नही सके।

0: जेके भी इन्हनि जा नाता गिरादा आहिनि सिंध खे तक़सीम करण जा, उन जे असां बिल्कुल ख़िलाफ़ आहियूं।
1: सिंध जा माण्हू सम्झनि था हुन जे वादानियत ते वार आहे।
2: सिंधी मां मिलंदो असां सिंध सां गॾु आहियूं, कंहिं बि समाज सां गॾु कॾहिं बि न बीहंदासीं।
3: सिंध जो अवाम न अॻे कॾहिं सिंध खे तक़सीम थियणु ॾिनो आहे, न हाणे ॾींदासीं।
4: पर सोचूं था त सिंध जी विरासत न, पर असां सिरनि जी विरासत कंदासीं।
5: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ो कंदी हिकु साल छा
6: सिंध जो ग्राम असांजो नामंज़ूर आहे।
7: धरतीअ जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं उन जो सबूत आहे जो हिफ़ाज़त ॾिसंदा सिंध जो पुराण जा हिन जा इहो हिफ़ाज़त जा चटा चूं कंदासीं। सिंध जा मज़दूर, सिंध जा हारी, सिंध जा उस्ताद, सिंध जा शाइर, अदीब, वकील फ्रंट ते हूंदा।

सिंध जे इम्कानी विरागे ख़िलाफ़ सिंध जा वकील मैदान ते अची विया। सिंध बार काउंसिल जे सटे वकील निका वास्ते मुतहिद सिंध जो वाज़े पैगाम ॾेई छॾियो। सिंध यूनिटी डे वारे सट ते अदालती कार्रवाई जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा। राज़ी खां कश्मोर ऐं करमचर खां केटी वधर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, हिकु ख़ासि शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़कनि डिवीजन जी समूरियुनि नंढियुनि वॾियुनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा।

सिंध में मनशियात खिलाफ़ कार्रवाइयूं वधीक असराइतियूं ऐं नतीजो ॾींदड़ बणाइण लाइ मज़बूत हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। चेयरपर्सन फलियाल टालपुर जी सदारत हेठि सिंध असेंबली जे घरू मामलनि वारी स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास में लाॻापियल अमलदारनि जी तफ़सीली ब्रीफिंग। फलियाल टालपुर चयो आहे त सरहदी इलाइक़नि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ते चेकिंग वधीक सख़्त कई वञे। तालीमी इदारनि जे भर पासे में मनशियात जो विकिरो ऐं इस्तेमालु कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। आई जी सिंध असांजी इजाज़त खां सवाइ तब्दील न थींदो। कचे जूं ज़मीनूं कंहिं वॾेरे या कंहिं ख़ासि माण्हू खे न ॾींदासीं। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियार हुसैन अंजार जे घरू मामलनि मोहम्मद सिंध असेंबली जी स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास खां पोइ ॻाल्हि ॿोल। ज़ियार अंजार चयो त कराची में स्ट्रीट क्राइम वधी वियो आहे ऐं पाण बि पेट्रोलिंग कंदुसि। कच्छ में अमन अमान सूरत हाल बहितर थी वई आहे। मुकमल अमन दुनिया में किथे बि न आहे। मुल्क में पिंकी खां बि वॾा मनशियात फरोश मौजूदु आहिनि। उन्हनि जा नाला हींअर यादि न आहिनि। एस एस पी फिदा जामरी तशदुद केस में मुलविस हूंदो त कार्रवाई कंदासीं। कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर ते तशदुद में मुलविस आवतार खे बि गिरफ़्तार कयो वेंदो।

0: हुकूमत पेट्रोलियम लेवी खत्म करण बाबति फ़ैसिलो न करे सघी। ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर दौरान जमात इस्लामी खां वधीक 10 ॾींहनि जी मोहलत तलब। जमात इस्लामी जा लाहौर, पेशावर, कराची ऐं सखर समेत ॿियनि शहरनि में धरणा जारी। लियाकत बलोच चयो आहे त हू पेट्रोलियम शयुनि ते अवाम लाइ रिलीफ चाहिनि था, बता लेवी ख़तम थियणु घुरिजे। जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम रहमान जा जे यू आई सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी सां बि राबता।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।